0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
1: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: ईद मिलाद उन नबी की रौनक। केरल वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षो में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो एशवेल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
4: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
5: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलादुन्नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी

0: मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग। बिंदास।

मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। वेडनेसडे मॉर्निंग है एंड 24 अगस्त की तारीख है आज, और बुधवार का दिन अपने आप में बहुत खास होता है। और दोस्तों, आज की सुबह खुशी आपके साथ कनेक्ट हो गई है, अब आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। एंड वेडनेसडे थॉट भी आज की मॉर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एक बार ठहर कर सोचिए, जहां आज आप खड़े हैं, कभी वहां तक पहुंचने में भी एक मतलब एक ख्वाब लगता था ना, जैसे अभी कोई भी आपने चीज अचीव की है तो उसके लिए आपने पहले आपको सपना लगता था, है ना, और आज वो आपके पास है। और जब आप उस ख्वाब तक पहुंच ही गए हैं तो आगे का सफर भी जरूर पूरा होगा। बस एक चीज हमेशा याद रखिए, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, मंजिलें दूर हो सकती हैं, लेकिन कोशिश कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी आज की मेहनत ही आपके कल की सबसे खूबसूरत कहानी लिखेगी। वेडनेसडे मॉर्निंग में खुशी आपके साथ है, और आज की सुबह इस पॉजिटिव थॉट के साथ हमने शुरुआत कर दी है। अब आप भी मेरे साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। आज तो छुट्टी भी है, बच्चे घर पर एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, कुछ तो अभी सो रहे हैं, लेकिन कुछ मंदिर भी जाकर अपने पेरेंट्स के साथ आ चुके हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, अपने शो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक से, और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आज के दिन क्या कुछ खास है एंड अपने इंडिया में, अपने मुरादाबाद में, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग, तो आपकी बिंदास मॉर्निंग यहाँ पर खुशी बनाने के लिए आ गई है।

0: विजिट करो।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, अभी आपने सुना बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक किशोर दा जी की आवाज में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और दोस्तों, जिंदगी सच में ना एक खूबसूरत सफर है, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही होती है। इसीलिए आने वाली कल की चिंता में ना अपने आज की मुस्कान मत खोइए। जो पल आपके पास है उसे पूरे दिल से जी लीजिए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। कभी रास्ते आसान होंगे, कभी थोड़े मुश्किल, लेकिन सफर खूबसूरत तब बनता है जब हम हर परिस्थिति में उम्मीद का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज को खुलकर जीते हैं, मुस्कुराते हैं और इसी सुनहरे सफर को अपनी खूबसूरत याद बनाते हैं। और दोस्तों, आज बात करते हैं 26 अगस्त के इतिहास की कुछ खास और यादगार घटनाओं की।

दोस्तों अब रुख करते हैं इतिहास के पन्नों का, क्योंकि 26 अगस्त का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। दोस्तों साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले पर कब्जा किया था, और वही 1910 में जन्म हुआ था मदर टेरेसा जी का, जिन्हें मानव सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1914 में आज ही के दिन बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश हथियारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी, और 1920 आज ही के दिन अमेरिका के संविधान के 19वें संशोधन के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। महिलाओं के अधिकारों की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम था।

इसके बाद 1978 में सिगमंड येन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जर्मन बने। तो ये थी 26 अगस्त के इतिहास की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें अपने अपने दौर में इतिहास की दिशा पर असर डाला। और श्रोताओं, आप भी आज की सुबह मेरे साथ जुड़ सकते हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचा सकते हैं अपना। अब हम आपके लिए सुबह सुबह आते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना। फिर देर किस बात की है, जल्दी से जो मोबाइल आपके हाथों में उसी मोबाइल पर हमारा नंबर डायल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अब चॉइस आपकी है। और आज कौन कौन सी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या कुछ स्पेशल है, सब आपको खुशी बताने वाली है। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा गीत भी सुनवा देते हैं आज की मॉर्निंग। अभी चाय शाय हुई आपकी या नहीं? ओ वो बहुत सारे हमारे श्रोता तो बोल रहे हैं मैम हम तो चाय वाय पीकर बैठे हैं आराम से। और कुछ अभी नाश्ता बना रही है हमारी मैम, किचन में रेडियो सुन रही है, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं घर में आज। तभी हम सोचे कितनी खुशबू कैसे आ रही है किचन से। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। आप बने रहिए खुशी के साथ।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग और बिंदास बातों के साथ बिंदास लड़की भी यहाँ पर हाजिर हो गई है। अब आप भी जल्दी से अपने मैसेज पहुँचाएगा। और दोस्तों आज 26 अगस्त है, एक ऐसी शख्सियत को याद करने का दिन जिन्होंने हमें अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा और मानवता के नाम कर दी। जी हाँ, मदर टेरेसा जी, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उन्होंने हमें सिखाया सेवा करना नहीं। दोस्तों उन्होंने सिर्फ सेवा करना नहीं सिखाया बल्कि ये भी बताया है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी जरूरतमंद का हाथ थामना और किसी अकेले इंसान को अपनापन देना भी बहुत बड़ी इंसानियत है। और मुझे लगता है कि मदर टेरेसा जी की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि हमारे पास कितना है ये मायने नहीं रखता है, हम उसमें से किसी के लिए कितना कर पाते हैं ये मायने रखता है। और आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं। और आइए दोस्तों उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी अपनी छोटी सी कोशिश से किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी जरूर लाएं।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

0: और आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशियाँ, बरकत और सुकून लेकर आए। दुआ है कि हमारे समाज में हमेशा मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत बनी रहे। ईद ए मिलाद की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है। और दोस्तों, हम आपको समय भी बता देते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। वक्त हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:58। और मैं आपसे कहती हूँ ना कि एवरी डे कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, और टुडे इज वेरी स्पेशल डे। एंड दोस्तों, आज 26 अगस्त है और आज का दिन हर उस महिला के नाम है जो अपने सपनों को जीना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है और समाज में बराबरी का हक रखती है। आज हम मना रहे हैं वुमेन्स इक्वलिटी डे, यानी महिला समानता दिवस। समानता का मतलब ये नहीं कि महिलाएं किसी से आगे निकलें, समानता का मतलब है बस इतना कि उन्हें भी वही मौके मिले, वही सम्मान मिले और अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिले। और दोस्तों, आज मैं आज की सुबह आपसे पूछना चाहती हूँ, एक खूबसूरत सा क्वेश्चन है मेरे मन में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आज आपको अपने घर की किसी महिला को एक खूबसूरत सा संदेश देना हो तो वो क्या संदेश होगा, बताइए, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाती हैं। एंड आपके सोकर उठने से पहले वो आपके लिए सब कुछ तैयार कर देती हैं, आज आप उनको क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मैसेज अगर आज की मॉर्निंग आप देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेज होगा, फटाफट से पहुंचाइए हमें। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मैं बस लौटकर अभी आती हूँ कुछ एड ब्रेक के बाद, एंड एक म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे बहुत ही शानदार सा। तो मैं वापस आती हूँ, बस यूं ही आप बने रहिए खुशी के साथ, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोस्तों दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करते हैं ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक है, अपने लिए भी मुस्कुराओ और अपनों के लिए भी मुस्कुराओ और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेकर आना आपका काम है। ओके, चलो अब जल्दी से देखिए, मुस्कुरा तो रहे हैं आप, हौले हौले से, थोड़ा सा शर्मा भी रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं तो थोड़ा सा और मुस्कुरा लीजिए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: करो।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत ट्रैक फ्रॉम द मूवी सुपर नानी से। बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज में प्यारा ट्रैक आपने सुना श्रेया घोषाल, साथ में दर्शन राठौर की जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी परवलीज जी आज की सुबह हमारे साथ जुड़े हैं। और इन्होंने आज की सुबह बड़ी खूबसूरत सी लाइनें भेजी हैं कि फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, फुर्सत नहीं है इंसान को इंसान से मिलने की, ख्वाहिशें रखता है दूर बैठे भगवान से मिलने की। क्या बात है सर। एंड नेक्स्ट इन्होंने थॉट शेयर किया है कि ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। थैंक यू सर, आज की सुबह आपने अपने थॉट हमारे साथ शेयर किए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। और ये कहते हैं कि हम आपको सुन रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। निरांशी जी का मैसेज हमारे पास आया है, साथ में अमित है, रितु है, शंकर लाल जी हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का, हर हर महादेव खुशी मैम आपको भी हर हर महादेव। और सर कहते हैं कि आज मैम हम मुंबई मुरादाबाद से मुंबई जा रहे हैं और आपको सफर में सुन रहे हैं, थैंक यू। और हमारे पास एक बड़ा ही स्वीट सा वॉइस नोट भी आया है, तो मैं ना अभी आकर प्ले करूंगी। एंड अभी सुनते हैं एक और शानदार सा ट्रैक। और आज मैं ना आपसे कुछ अलग सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए, एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, तो उसको भी सुनवाएंगे, ठीक है। आप बस बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, एंड वो क्वेश्चन मैं अभी आकर पूछूंगी आपसे। तब तक आप सब तैयार हो जाइए और एंजॉय कीजिएगा एक बेहतरीन ट्रैक आज की सुबह। शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग, मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ, और बिंदास बातों के साथ खुशी हाजिर हो गई है. और आपके यहाँ पर बैक टू बैक जो मैसेज आ रहे हैं ना, वाओ कमाल ही कर दिया आपने तो. थैंक यू सो मच एफ मुरादाबाद को इतना प्यार देने के लिए. और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ. सृष्टि हमें मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाती हैं आज की मॉर्निंग. और एक हमारे पास वॉइस नोट भी आया है, तो मैं उसको जल्दी से प्ले कर लेती हूँ. आज की सुबह हमारी डियर लिसनर क्या पहुँचाती हैं.
1: अस्सलाम वालेकुम, जश्न ईद बहुत बहुत मुबारक हो. खुशी दी, मैं अफरोज फातिमा.
0: अफरोज जी, सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है. वालेकुम सलाम, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपके.

और दोस्तों अपने मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है सब आपको अपडेट मिलने वाली है, बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए खुशी के साथ और अपने सफर को बनाइए इंटरेस्टिंग। तो चलिए सुनवाते हैं एक पंजाबी ट्रैक आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल।

0: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए मैंने जो प्रॉमिस किया था आपसे एंड वो उसको हमने कंप्लीट किया। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मुरादाबाद के मौसम के बारे में कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है हमारे सिटी का। मुरादाबाद में आज 26 अगस्त को मौसम विभाग ने बारिश और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बौछार भी देखने को मिल सकती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यानी बारिश के साथ साथ उमस भी परेशान कर सकती है। घर से निकल रहे हैं तो मौसम का मिजाज देखकर ही निकलें जनाब, ठीक है? और छाता रेनकोट साथ ही रखें। अब बात करते हैं मुरादाबाद से जुड़ी एक अच्छी खबर की। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए काशीपुर बिलारी रूट पर 30 नई बसें बढ़ गई हैं। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और इस रूट पर करीब हर 10 मिनट में बस उपलब्ध होने की सुविधा मिलने की बात कही गई है। और अब युवाओं के लिए खास अपडेट है। मुरादाबाद के कॉलेजों में 28 से 30 अगस्त तक 3 दिवसीय खेल महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी शहर के कॉलेजों में खेल जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। तो ये थी मुरादाबाद की कुछ खास अपडेट। जुड़े रहिए अपने शहर, अपने लोगों और अपने रेडियो के साथ, क्योंकि आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाना हमारी भी जिम्मेदारी है और खुशी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी मुझे मैसेज पहुंचाइए, ठीक है? नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी कुछ एड ब्रेक का टाइम हो गया है तो एड ब्रेक के बाद एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद खुशी आने वाली है वापस। तब तक आप मुस्कुराते रहिए और गर्मा गर्म नाश्ते का फैमिली के साथ लुफ्त उठाइए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आज की सुबह पूछने वाली हूँ आपसे, और बहुत ही ज्यादा मैं टिपिकल क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ, इजी से लेकर आई हूँ आपके लिए। और आपको मुझे बताना है एक मजेदार सवाल है, और आपको मुझे बताना है कि बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताइए कौन हूँ मैं। आज की मॉर्निंग बहुत मजेदार सवाल, बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताइए कौन हूँ मैं। तो जल्दी से बताइएगा आप राइट आंसर क्या है। नंबर हमारा है 9837896896। और दोस्तों, अभी मानसून चल रहा है, बारिश का ये महीना है, और इसमें आप कैसे अपना ख्याल रखें, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, बारिश का पानी और सफाई, गंदे या जमे पानी से बच्चों और घर के आसपास बिल्कुल भी पानी जमा ना होने दें, और बच्चों को भी इस तरह के जो पानी होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, वो मानते नहीं हैं अपने, उसी में वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो उस जमे हुए पानी से बच्चों को बचाइए, और घर के आसपास पानी बिल्कुल भी ना जमा होने दें। अगर आपको लगता है कि पानी इकट्ठा हो गया है तो उसको आपको साफ करना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और मानसून के समय में ना उबाल कर या फिर आप साफ पानी जरूर पीजिएगा। बारिश में दूषित पानी से पेट संबंधित परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर जब भी आप पानी पिए तो उसको बॉइल करके, ठंडा करके तभी उसका इस्तेमाल करें। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खुले में रखे गए कटे फटे फल, चाट और बहुत देर से रखा खाना खाने से बचें। और दोस्तों, बिजली और फिसलन से सावधान रहें, बारिश में खुले बिजली के तारों और गीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी रखें, एंड गर्म और पौष्टिक खाना खाएं, मौसमी सब्जियां, दालें और संतुलित भोजन लें, बहुत तला भुना कम खाएं, ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना है आपको, ठीक है। और बारिश में भी पता है आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, उसके लिए बाहर जाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आप घर पर ही हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आज की सुबह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं फिर से बता देती हूँ आपको। बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। जल्दी जल्दी से बताइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और एक बड़ा ही शानदार सा ट्रैक आज की सुबह मैं आपको सुनवा रही हूँ।

0: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना हरनूर की खूबसूरत सी आवाज में बालियां। और आज की सुबह मैंने आपसे कड़े क्वेश्चन पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था एंड सिंपल सा क्वेश्चन था कि बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ, बताइए कौन हूँ मैं। एंड यहाँ पर आपके सही जवाब आए हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आज के लकी सुपरस्टार कौन बनते हैं ये हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए क्लैपिंग करना चाहेंगे सो। ये जोरदार तालियां आप सभी के लिए एंड आप सभी ने पार्टिसिपेट किया आज की मॉर्निंग और फटाफट से अपने अपने जवाब पहुंचा दिए हैं आज की सुबह आपने। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है प्रिय मित्र आरजे रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे रीना जी अभी आई है, मैं खुशी हूँ सर। और ये राइट आंसर देते हैं बादल, एग्जैक्टली राइट सर। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं नूनीश कुमार जी, गांव दयानाथपुर, तहसील कांट, जिला मुरादाबाद से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज के लकी सुपर स्टार बनते हैं आप हमारे शो की। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सैनी जी का और इनका जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सर ने जवाब दिया है पतंग। पतंग कैसे रोती है सर? आसमान में उड़ती है लेकिन वो भी डोर के साथ, बिना डोर के तो नहीं उड़ पाएगी। और नेक्स्ट हमें राइट आंसर दिया है यहाँ पर बादल यशपाल जी ने, सही जवाब दिया है बादल और नाम है सर का यशपाल, बिंदल यमुना नगर हरियाणा से। थैंक यू सो मच सर, आज की मॉर्निंग आप हमारे साथ जुड़े, पार्टिसिपेट किया आपने शो में। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी का और ये कहती है हमारी तरफ से आपको प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड एक वॉइस नोट हमारे पास आया है तो मैं उसको भी क्विकली प्ले कर लेती हूँ आज की मॉर्निंग, क्या पहुँचाती है जरा सुन लेते हैं हम। अरे वाह क्या बात है, इतना प्यार से आपने जवाब दिया है, पहले का आंसर है बादल। थैंक यू। वैसे आसमान में भी बादल हो रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी मुझे दीजिएगा अनुमति जाने की एंड यहाँ पर रीना आ चुकी हैं और आपके साथ रहेंगी 12 बजे तक एंड करना ढेर सारा फन मस्ती एक्टिविटीज होने वाली हैं, तो आप बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और एफएम मुरादाबाद को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। जोरदार तालियां बन सकी है ना आप सभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड वंस अगेन कीप स्माइलिंग, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है और जब मुस्कुराते हैं ना तो जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम हो उसका भी हम सामना कर पाते हैं। ये मुस्कुराहट जो है इसमें बहुत पावर होती है, पता है आपको? हाँ वैसे पता है, हमारी जो लिसनर है वो इंटेलिजेंट है नो डाउट। तो चलिए दोस्तों अभी खुशी चलती है, लेकिन सी यू सून, मैं आपसे मुलाकात करने वाली हूँ 3 से 5, तब तक के लिए बने रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, टेक केयर।
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

जी गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में आज रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं। समय की बात करूं तो 10:15 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 26 अगस्त अपने आप में बहुत ही खास है। ये दिन यानी कि बुधवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, यानी कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का दिन माना जाता है बुधवार को। और आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। और अभी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बादल भी है और हवाएं भी चल रही हैं, साथ ही साथ हल्की सी उमस वाली गर्मी भी। बारिश कभी भी आ सकती है तो इसीलिए थोड़ा संभल के रहिए, रेनकोट और छाता लेकर ही बाहर जाइए। और आप सफर में हैं तो मैं कहती हूँ जी वॉल्यूम बढ़ाइए और रेडियो की सुई है ना बिल्कुल भी नहीं आपने घुमानी है। अगर आपने रेडियो की सुई घुमाई तो बहुत सी चीजें हैं जिसका अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए कनेक्ट रहिए। अगले 2 घंटे तक मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, यानी कि 12 बजे तक आप सभी के साथ रहूंगी श्रोताओं। और आप सभी को क्या करना है, हमें मैसेज करना है, उसके लिए मैं आपको नंबर बता देती हूँ 9837896896 पर आप हमें मैसेज करके आप अपने फेवरेट वाले गाना एंजॉय कर सकते हैं। आज वैसे बहुत स्पेशल डेज भी मनाए जाते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला गाना है, उसके बाद लौट कर आते हैं जी।

0: स्कूल शुरू।
1: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। मस्त माहौल जीनी दे, यानी कि सुनिधि चौहान की आवाज में आपने गाना एंजॉय किया है महबूब मेरे। जिस लड़की ने ये गाना गाया है महबूब मेरे, यानी कि उस लड़की की है सिर्फ और सिर्फ 16 साल, यानी कि सुनिधि चौहान ने 16 साल की एज में ही सिंगिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उस टाइम मतलब उनकी आवाज में जो बेस था, आवाज चेंज करने की जो टैलेंट था उनके अंदर, वही टैलेंट यानी कि बॉलीवुड में उनको लेकर आया। जब वो 9 साल की थी तभी से वो सिंगिंग के लाइन में बहुत उसका इंटरेस्ट था। हर जगह फंक्शन में जहां भी मौका मिलता वो जरूर गाती थी। ऐसे ही उनकी मुलाकात डायरेक्टर से हुई तो उन्होंने उनको फिल्मों में गाने का मौका दिया और इस गाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको मौका मिलता ही रहा। और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है मॉर्निंग मसाला शो में और आज की तारीख यानी कि 26 अगस्त बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मनाया जाता है विमेन इक्वालिटी डे। ये दिन सिर्फ महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करता बल्कि उनकी हिम्मत, पहचान और बराबरी का जश्न है। साल 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसी ऐतिहासिक कदम की याद में ये दिन मनाया जाता है। एक महिला सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती बल्कि वो डॉक्टर, टीचर, पुलिस ऑफिसर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, नेता और आरजे बनकर हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाती है। तो बस पहचानना है अपने अंदर की कि आप एक्चुअल में है क्या, आप क्या कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है और जो आप बनना चाहते हैं उसमें लगन के साथ आगे बढ़िए, मेहनत करिए, तभी आपको अचीवमेंट मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे तो। और आज का संदेश है महिलाओं को बराबरी सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि समान अवसर और फैसलों में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो आज मेरी प्यारी विमेन के लिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। आप वो शिखर को भी पार कर सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस आपने मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अगर आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये कि ये मत सोचिए कि आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, दुनिया बोलती रहती है आपने आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल आगे बढ़िए। और मेरे पास कुछ मैसेज है वो भी शामिल करेंगे। गुड मॉर्निंग आरजे रीना जी, नमस्कार, हाउ आर यू। आई एम फाइन सर, आप बताइए कैसे हैं। कुछ दिनों से आरजे आनंद सर प्रोग्राम लेकर नहीं आ रहे हैं, सर की तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल, सर की तबीयत तो ठीक है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। एक्चुअली उनके फादर जी गुम हो गए हैं जो कि मिल नहीं रहे हैं। आज समथिंग अगर मैं बात करूं तो 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक उनके फादर जी का कोई पता नहीं है कि वो कहां पर है कहां पर नहीं है। ये हमारे पास यमुनानगर से मैसेज पहुंचाते हैं यशपाल बिंदल जी।

हम तो एकदम बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी जी, और इनका कहना है कि इस समय सफर में सुन रहा हूँ, मुंबई से मुरादाबाद आ रहा हूँ। ओके जी, और ये क्या बात है जी, बहुत ही शानदार सर, आप गाना सुनना चाहते हैं, सो आपका ये जो गाना है हम जरूर आपको ये गाना सुनवाएंगे।

0: की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड होस्ट, जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस पलवरिली जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं दो दीवाने शहर में। बिल्कुल सर, हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ। बस अर्जुनीना के साथ कनेक्ट रहिए और अपना मैसेज भेजते रहिए, नंबर है 9837896896।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
2: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
1: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

गुड वाली मॉर्निंग है बिंदा मॉर्निंग मसाला शो में श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 10:41 हो चुके हैं और आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आ गए भैया। अह क्या बात है, जब आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं ना तो मजा आ जाता है उन्हें देखकर और पढ़कर। बहुत बिंदास आप सभी के मैसेज आते हैं और सही बात यह है कि आप सभी के बिना हम अधूरे हैं और बस आप मिल जाते हैं तो पूरे हो जाते हैं। चलिए फिलहाल आज ही आप सभी के साथ कनेक्टेड श्रोताओं और मैसेज शामिल करते हैं कि हमारे पास किन का मैसेज आया है और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। निधि हमारे साथ कनेक्ट होती है पीतल नगरी मुरादाबाद से और ये गाना सुनना चाहती है बहन बहना भाई की कलाई, यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर ये गाना सुनना चाहती है। सो डेफिनेटली हम आपको ये गाना जरूर सुनवाएंगे जी। और वैसे भी बस कल कल का दिन और है, उसके बाद परसों यानी कि परसों रक्षाबंधन है ही, तो भाई जिन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है तो कर लीजिए। मैंने भी नहीं करी है, करने वाले हैं तो साथ मिलकर चलेंगे। तो आप मैसेज करके बता सकते हैं कि रीना मैडम हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। और भैया जिन्होंने अभी तक यानी कि शॉपिंग कर ली है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्या बात है जी भैया। और बहुत से तो ऐसे हैं आज ही अपने घर जाने वाली हैं और बहुत कल जाएंगे और बहुत से रक्षाबंधन वाले दिन ही सुबह सुबह निकलने वाली हैं। लेकिन भैया ये भी कहा जा रहा है रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा कॉल यानी कि सुबह बताया जा रहा है कि 9:41 तक आप राखी उससे पहले बांध सकते हैं, उसके बाद और भी टाइमिंग है जिसके बारे में जैसे ही अपडेट मिलता है हम आप सभी तक जरूर कोशिश करेंगे पहुंचाने तक की। चलिए फिलहाल और भी आगे बढ़ते हैं अपने शो में, जो मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करते हैं। बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी और लक्ष्मी कश्यप जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और साजन फिल्म से ये गाना सुनना चाहती हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सब जी। बिल्कुल हम आपको ये गाना सुनाएंगे।

सर्विसेज की बात करूँ तो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये प्रिंसी, इनका नाम है, मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं और रक्षाबंधन का ये गाना सुनना चाहती हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गाना सुनते हैं निधि की रिक्वेस्ट पर। और

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

मुझे है दम, बहुत प्यार करते हैं रेडियो से सनम। हेलो जी, हम आप सभी बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे श्रोता है, क्यूटी क्यूटी क्यूटी हैंडसम से। सो गुड वाली मॉर्निंग है जी। मॉर्निंग मसाला शो में समय की बात करूँ तो 10:54 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सनम मूवी से ये गाना है, अनुराधा पोडवाल जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना। 90s के जो भैया गाने होते हैं ना, बहुत ही शानदार वाले गाने। और आज 26 अगस्त बहुत स्पेशल है, बहुत खास है सभी मुस्लिम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, क्योंकि आज है ईद ए मिलाद उ नबी, यानी कि यह दिन में इस्लाम धर्म में बहुत खास माना जाता है।

है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की याद में यह दिन मनाया जाता है। आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, जुलूस निकालते हैं और भाईचारे व इंसानियत का संदेश देते हैं। इस खास दिन पर सभी सभी से दुआ करते हैं कि हमारे जीवन में शांति, प्यार और भाईचारा बना रहे। और सभी को यानी कि ईद ए मिलाद उन नबी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई आज तो सच बताओ घरों में रौनक ही रौनक होगी, है ना, क्योंकि ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही मतलब एक बड़े त्योहार की तरह ये दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और भाईचारा हमेशा प्यार बना कर रखना चाहिए, इंसानियत हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। चलिए फिलहाल अगले बढ़ते हैं, जो आगे हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। राधे राधे दी, एक गाना सुनवा दीजिएगा। बरसात का गाना सुनना चाहते हैं, लेकिन परम मित्र जी आपने अपना नाम भी बताना बहुत जरूरी है। इनके नंबर है यानी कि 4 डिजिट 4455। भैया 4 डिजिट भी 4455 ही है। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। रक्षाबंधन के मौके पर यक्षपा जी का गाना सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल जी, यही गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं। और आप कब घर जा रही हैं? जिस दिन रेडियो पर मेरी आवाज आनी बंद हो जाए, सोचिए कि रीना जी घर पहुंच गई है।

हमारे पास मैसेज आता है अंसार हुसैन जी का और अपने भतीजे का ये फोटो भी भेजते हैं, यानी कि इनकी बहन घर आ गई है। क्या बात है जी, दौलतबाग मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। और जब बहन घर पर आती है ना, अलग ही खुशी अलग ही रौनक आ जाता है। और साथ ही साथ इनका प्यारा भतीजा भी आया है जिसका फोटो भी इन्होंने भेजा है। बहुत ही क्यूट, सो क्यूट भतीजा है आपका। और ये पुराना गाना सुनना चाहते हैं, रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहन, राखी बनवा ले मेरे वीरा। क्या बात है जी, बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनाएंगे। फिलहाल अरिजीत सिंह की जो खूबसूरत आवाज में धागों से बंधन वाला जो रिश्ता है भाई बहन का, और राखी रक्षाबंधन के ये पावन अवसर पर ये गाना हम आप सभी को सुनवाएंगे। एडवांस में आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, और भाई बहन का प्यार हमेशा यूं ही बना रहे जन्मों जन्मांतर तक। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे श्रोताओं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। 11 बजकर यानी कि 8 मिनट हो चुके हैं और आप कहाँ बिजी हैं जी। आई नो कि आज फेस्टिवल है और आप उसमें ज्यादा ही व्यस्त है, लेकिन थोड़ा सा रेडियो के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है जी। सही बोल रही हूँ मैं? तो आपने क्या करना है जी, हमें मैसेज करना है, नंबर है 9823789698 पर, और अपना फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं, यानी कि भाई बहन के लिए गाना डेडिकेट कर सकता है और बहन भाई के लिए गाना डेडिकेट कर सकती है, क्योंकि कल का दिन है, उसके बाद तो रक्षाबंधन है। मतलब कोई भी त्योहार हो और हम उसकी तैयारियां ना बहुत पहले से करने लग जाते हैं, और कैसे त्योहार एक दिन में ही खत्म हो जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। मतलब तैयारियां इतने दिन से और एक दिन में ही कैसे त्योहार खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि ना कि 2-3 दिन रहना चाहिए, ताकि भाई बहन जो जिनकी शादियां हो गई है वो अपने भाई के घर आती है, तो कम से कम एटलस 2-3 दिन तक तो रहकर जाए यार, एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें, फिर से वही बचपन वाला खेल फिर से खेले और मस्त एंजॉय करें। 2-3 दिन तक रहना चाहिए, है ना। मतलब चलो राखी एक दिन बांध दिया, लेकिन बस भाई के घर 2-3 दिन तक रहो, और ऑफिस वाले भी कहे हाँ भैया 2-3 दिन तक तुम्हारी छुट्टी है, एंजॉय करो तुम, क्योंकि पूरा साल तो काम करना ही होता है। एक ऐसा दिन आता है जो हाँ भाई बहन का प्यार एक दूसरे के लिए एक दूसरे के पास खींच कर ही ले आता है, चाहे कोई देश में रहता हो विदेश में रहता हो, हर कोई अपने घर जाता है अपनी बहन के पास जाता है, बहन भाई के घर आती है एक राखी बांधने के लिए, तो बहुत प्यारा ये त्योहार लगता है। और चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्या हमारे श्रोता प्यारे प्यारे मैसेज क्या भेजते हैं। हेलो मैडम जी, गुड मॉर्निंग हमारे पूरे परिवार की तरफ से, वेरी गुड मॉर्निंग जी। निरांशी जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और इनके दोस्त हैं अमित, रितु और शंकर लाल जी, और ये गाना सुनना चाहती हैं, मेरी राखी की डोर कभी कमजोर ना होना जी। बिल्कुल आपको हम ये गाना सुनवाएंगे, प्रकाश नगर लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट होती है, आप तो पास में ही रहती हैं जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आज मैडम जी बहुत खुश हैं। अरे हम तो जी बहुत ही खुश रहते हैं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं गोपाल सैनी, और इनके बेटे का नाम है कुशांक सैनी। बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, मेरे और मेरे बेटे का जन्मदिन साथ एक ही साथ है। अरे क्या बात है जी, पिता का भी और बेटे का भी जन्म एक ही दिन, आये हाय क्या बात है जी, इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। आज आप अपने और मेरे बेटे के लिए जन्मदिन का एक प्यारा सा गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल सर, हम आपको गाना सुनवाएंगे, और हमारी पूरी एफएम टीम की तरफ से आप दोनों को हैप्पी वाला बर्थडे जी, और आप दोनों हमेशा यूं ही खुश रहे, और आपके बेटे का बॉन्ड हमेशा बहुत प्यारा रहे, बहुत प्यारा वाला, और आप हमेशा यूं ही खुश रहे जी। खेमपाल सैनी जी, आपका बेटा मतलब जो भी भगवान से कामना करे वो उनको जरूर मिले, और हमारे पूरी रेडियो की टीम की तरफ से आप सभी को आपके बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंस अगेन हैप्पी वाला बर्थडे जी।

0: हम आपको गाना सुनवाएंगे सर, बहुत ही प्यारा गाना है, तू मेरा दिल तू मेरी जान, समझ जाइए ये गाना हम आपको सुनवाने वाले हैं। बहुत ही शानदार गाना है ये, खेमपाल जी आपके लिए गाना रहेगा और आपके बेटे के लिए।
1: है फासले तुमसे न जाने क्यों।
0: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं, टिल्लू राजा इनके दोस्त है। ओके जी, आपको शुभ बुधवार सुबह सुबह की, राम राम जी राम राम जी। और ये लाइनें भी लिखते हैं भैया, इतने धाकड़ वाली लाइनें लिखते हैं ना भाई, क्या ही कहे। अगर लिखते हैं ये, अगर प्रेम तुमसे पागल ना बना दे, अगर प्रेम तुम्हें पागल ना बना दे तो समझना तुम्हें प्रेम हुआ ही नहीं है। अरे अरे, मतलब जिस प्यार में टूट जाओ, बिखड़ जाओ, पागल हो जाओ, वो प्यार प्यार होता है। नहीं जी, प्यार हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है, प्यार को परखने का, प्यार को समझने का। बट प्यार एक अच्छा एहसास है, मुझे लगता है कि एक दूसरे की केयर प्यार में बहुत जरूरी है, और एक दूसरे की मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्यार में। और ये गाना सुनना चाहते हैं आशिकों से बस यही एक। अरे क्या बात जी, ये गाना भी बड़े कहाँ से निकाल कर आते हैं सर आप, ऐसे ऐसे गाना बताइए। जिनका ब्रेकअप हुआ है भैया, उन वो तो वैसे भी घायल ही हो जाएंगे। चलिए फिलहाल गाना सुनवाते हैं, उसके बाद लौटते हैं।

कितना खूबसूरत गाना है ना, तू मेरा दिल तू मेरी जान, आई लव यू डैडी। हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग में साला शो में आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 11:22 हो चुके हैं, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं, यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और भैया आज जिनका भी बर्थडे है ना, हमारी पूरी रेडियो की टीम की तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे, और आप अपनी जिंदगी में हमेशा यूं ही खुश रहें। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रामपुर से हमारे साथ कनेक्ट होती है शमा जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसी हैं। गुजरात से मधु भाई चौहान जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, इसे समझो ना रेशम का तीर, तिरंगा मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली कोशिश करेंगे सर हम आपको ये गाना सुनवाने की पूरी पूरी। अगले मैसेज की बात करूं तो जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। हल्के हल्के हार्ट टचिंग प्रेजेंटेशन आरजे रीना सिस्टर जी। हेलो जी, अजीत कसाना जी, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, कार्ट रोड लदावली मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं।

0: अमित वर्मा जी कनेक्ट होते हैं हेमगिरी मुराद कॉलोनी मुरादाबाद से। रीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक गाने की फरमाइश है, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे जग छोड़ना, बहुत शानदार वाला गाना है। और ये हेमगिरी से मैसेज आता है, तो भाई हेमगिरी ना वैसे काफी दूर है और मैं वहां पे गई भी हूँ, यानी कि शिव मंदिर है, बड़ा अच्छा है, मतलब जो शिव मंदिर है वहां का अच्छा लगता है वहां पर जाके, पॉजिटिविटी एक अलग ही अनुभव फील होता है पॉजिटिविटी का। तो हम ये गाना आपको जरूर सुनवाएंगे जी। फिलहाल आप शो में कनेक्ट रही और कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद और गाने सुनेंगे और आप सभी के मैसेज भी शामिल करेंगे।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

जी गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 11:00 यानी कि 33 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 26 अगस्त अपने आप में बहुत ही ज्यादा खास है। बुधवार का दिन है और साथ ही साथ आपने बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है कुमार सानू की आवाज में पायल मूवी से, और ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि 1992 में। और आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका मैसेज हमारे पास आता है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी रीना जी, आपको आपका जो प्रोग्राम है हम बहुत हमेशा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक गाने की फरमाइश है, अगर मुमकिन हो यानी कि तो हमारा गाना प्ले कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। सर देखिए, आपने मैसेज किया है हमें तो हम आपका गाना भी डेफिनेटली प्ले करेंगे, बस आप बिंदास होकर थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होता है और आप अपना गाना सुनिए, बिल्कुल हम आपको गाना सुनवाएंगे। और ये गाना सुनना चाहते हैं राधा का संगम मूवी से, ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है अधूरा। बिल्कुल जी, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। वैसे भी अब यानी कि जन्माष्टमी बहुत ही यानी कि नजदीक है, 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाया जाएगा। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, इनके दोस्त है सैयद शारी के लिए मिराज अंसारी, बाबू अंसारी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप जी? खुशी जी तो नहीं है, रीना जी हैं। फिलहाल खुशी जी के पास आपके मैसेज जरूर पहुंच जाएगा और इनके कहने के हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा। जी बिल्कुल,

अगले मैसेज की बात करूं तो संजू जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। रीना दी कैसी हो आप? आपको राखी की लक लक वधाइया, आपको भी जी लक लक वधाइया। और ये गाना सुनना चाहते हैं, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आए, आय हाय वो तुम ही हो सनम। बिल्कुल जी, हम संजू जी आपको गाना ये डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन श्रोताओं उससे पहले गाना सुनते हैं, उसके बाद जो आप सभी के मैसेज आए हैं उनको भी शामिल करेंगे। बस आज रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में और आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता और समय की बात करूं तो 11:44 हो चुके हैं और जहां यानी कि अभी 3-4 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि चीनी की जो दाम है यानी कि 65-70-80 तक जाने वाली है, वहीं अब सरकार ने थोड़ी सी राहत दे दी है यानी कि चीनी के दाम में 18% की गिरावट कर दी गई है यानी कि थोड़ी सस्ती हो गई है चीनी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ट्रेन की तो ये कहा जा रहा है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और इसकी वजह से ट्रेन में भैया बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि और भी यानी कि ट्रेनें चलाई जाए ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का कोई भी परेशानी ना हो और जो भी बहनें हैं भाई है अपने घर आसानी से पहुंच जाए, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं तो आप आसानी से जब घर जा रहे हैं तो एक बार लोकेशन सर्च करें आखिरकार की कौन सी ट्रेन है जो नई ट्रेन चली है जिससे आप आसानी से आप अपने घर पहुंच जाए, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिलहाल इसी के साथ हम बढ़ेंगे आप सभी के मैसेज की तरफ। किनका मैसेज हमारे पास आया है? अजय कुमार जी शाही खद्दर से कनेक्ट होते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम जी आपको भी, और ये गाना सुनना चाहते हैं। सजदा तू मेरा कबूल कर ले, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार ये गाना है। सो डेफिनेटली सर हम आपको ये गाना जरूर सुनवाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? और ये गाना सुनना चाहते हैं, खता तो हो जो जब हाले दिल किसके कहे, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है और 90s के गाने हैं और 90s के गाने वैसे भी बहुत ही शानदार होते हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हरिओम महेश्वरी लाइन पर मुरादाबाद से। चलिए श्रोताओं, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और जो आप सभी के मैसेज रहते हैं वो भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है श्रोता, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। आंखें बंद करके जो तेरा चेहरा नजर आया, और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं, यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 11:00 यानी कि 57 मिनट हो चुके हैं, और इसी के साथ मैं लेती हूं यहां से जाने की इजाजत। हम आपको मिलने वाले हैं यानी कि इवनिंग मस्ती शो में शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, जहां पर करेंगे ढेर सारी बातें। और आप सभी के मैसेज भी शामिल हो गए हैं, लेकिन जो आप सभी के गाना है वो तो हम जरूर प्ले करेंगे। बस आपने कहीं नहीं जाना है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि हम आप सभी के लिए एपिसोड भी प्ले करने वाले हैं, जिसका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब हम इतना मेहनत करते हैं तो बस थोड़ा सा ये चाहते कि भैया आप सभी का ना फीडबैक हमें मिल जाए। चलिए, आप अपना फीडबैक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलिए। हमारा नंबर है 9823789689। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और आज का प्रोग्राम बहुत ज्यादा खास है, सेहत सही लाभ कई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रीना। आज की कड़ी बहुत खास है क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषय पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस और दूसरा है विश्व पोषण दिवस यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दे सके तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: धन्यवाद आरजे रीना, और मेरे सभी प्यारी श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण ये दोनों ही एक ऐसे विषय हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उसकी प्रक्रिया को स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलत फहमियां झिझक मौजूद है।
0: सच कहूं सियतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड्स शब्द बोलना भी आसान नहीं होता, लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखो आरजे रीना, ये एक सामाजिक सोच का मामला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जिससे ये कोई गंदगी या शर्म की बात नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर लड़की और हर महिला के जीवन में एक सामान्य जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ एक महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: हाँ, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: ये तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
1: देखिए आरजे रीना, मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड्स को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधनों का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की साफ सफाई रखना और इस्तेमाल की गई सामग्री को सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम संसाधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती हैं क्या?
1: बिल्कुल आरजे रीना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिलते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय मिलकर सुविधाएं सुनिश्चित करें।
0: और यही पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल आरजे रीना, बिल्कुल सही समझाया आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी जैसे चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: तो एक और संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए आरजे रीना, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विधिवद्धता, आधी थाली में सब्जी हो, साथ में दाल या प्रोटीन जैसे अनाज, रोटी, चावल और अगर संभव हो तो दूध, दही या हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, पानी भी पर्याप्त मात्रा में ही पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है वही सबसे अच्छा है, बस हम उसे सही तरीके से अपनाते हैं तो।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वे किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: बिल्कुल आरसी रीना जी, मेरे पास एक कहानी है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ श्रोताओं। हमारे ही एक गांव में एक लड़की रीना की कहानी। रीना करीब 14 साल की थी, पढ़ने में तेज लेकिन बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुए तो वो घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी खुलकर बात ही नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया और कहा, किसी को बताओ मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए और ना ही उसे ये पता था कि कितनी बार बदलना है। वो भी बस उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रहती थी। धीरे धीरे उसे खुजली और जलन होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद ये भी नॉर्मल है। इसी के साथ एक और समस्या थी, रीना का खान पान। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियाँ, फल, ये सब तो बहुत ही कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था, इवन उसे चक्कर भी आते थे। कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आई। उन्होंने लड़कियों से इस विषय में खुल के पीरियड्स के बारे में बात की। पीरियड्स क्या होता है, उसे कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतना खुलकर सब कुछ बता पा रही थी और सारी बातों को सुन पा रही थी। शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानी बताई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसे समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। उसे सैनिटरी पैड दिए गए और ये भी बताया गया कि आयरन की कमी उसे क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती है। और उसके बाद आशा दीदी द्वारा उसे आयरन की गोली दी गई और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह भी दी गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू किया, समय समय पर पैड बदलना सीखा और अपने खाने में सुधार किया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वह नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण हमें इसे आसानी से संभाल सकने में हमारी हेल्प कर सकता है।
0: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
1: बिल्कुल आरजी रीना, और हमारा मकसद भी यही है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
1: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आरजे रीना। मैं आपको बताता हूँ, अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों में भी पोषण की कमी एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, दहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता है। कई बार वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं। इसका असर उनकी ताकत कम करना, उनकी क्षमता कम करना और उन्हें लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर असर भी पड़ता है। इसका
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझते हैं, उसके पीछे भी पोषण की ही कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, यही बात हम विश्व पोषण दिवस के माध्यम से समझाते हैं और विश्व पोषण दिवस की संदेश से हमें ये बात जोड़ देती है। इसी दिन का मकसद है सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए जरूरी है। और जब हम आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि सही पोषण पुरुष हो या महिला, हर किसी को मिलना चाहिए। और जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसे समाज की योजना बनाएं जहां जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और बिना झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और इसमें पोषण भी एक बहुत बड़ी कड़ी है श्रोताओं, और बहुत ही मजबूत कड़ी है, यानी कि ये दोनों ही विषय एक दूसरे को जोड़ते हैं।
0: सेहतिया भैया, आपने अनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
1: देखिए अर्जेंटीना, अनीमिया भारत में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य समस्या है, खासकर किशोरी लड़कियां और महिलाओं में इसकी दरें काफी ज्यादा हैं, लेकिन पुरुष भी इसमें अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होती है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि उन्हें हर मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो ये कमी और भी बढ़ जाती है।
0: तो इसका सीधा मतलब है, अगर हम पोषण पर ध्यान देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जेंटीना, और बिल्कुल सही समझा आपने। इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, दाल और चना, गुड़, मूंगफली, तिल, और अगर संभव हो तो दूध, दही या अंडा या अन्य प्रोटीन के जो सूत्र हैं उनको भी आप आहार में जरूर शामिल करें। फल जैसे केला, अमरूद, संतरा, ये भी बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज को रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
0: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जेंटीना आपने, और यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक और बात, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो भी खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वो भी हमें बीमारी का कारण बना सकता है।
0: साथियों, आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है बल्कि यह हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती हैं। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
1: याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज की यही शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है,
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए, और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय बाय, नमस्कार।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
3: तो आप इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
1: आज के किसान ज्ञान वार्ता के इस ताजा एपिसोड में किसान भाइयों का और हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ। आप वहां वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है।
2: स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं का मेरा जो नमस्कार विनय जी।
1: सर, आजकल बड़ी चर्चा है किसान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के बारे में।
2: जी जी,
1: तो उस पर थोड़ा प्रकाश।
2: हाँ हाँ, प्रधान समृद्धि जो है आपके केंद्र है, ये हर जगह पर है। अगर हम देखें तो ये सभी खाद की दुकान है जहाँ पे खेती से संबंधित आदान मिलते हैं। खेती के आदानों में अगर हम जैसे लें तो सबसे पहला आदान होता है बीज। बीज वहाँ से हम लेके आते हैं दुकान से। पहले बीज हमारे यहाँ पे भी हम भी उत्पादन करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आज के समय पे क्या है, संकर बीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। नई नई जो वैरायटियाँ आ रही हैं जिनसे हमें अधिक उत्पादन मिलता है, वो बीज आजकल इन्हीं जो समृद्धि केंद्र पर आपको उपलब्ध होते हैं। बहुत सी जगह साइन बोर्ड लगे होंगे, बहुत सी जगह एक तरह से एक फ्रेम जैसा लगाया जाता है, वहाँ प्रधानमंत्री जी का फोटो होता है और ये सब लिखा रहता है। उसमें ये भी लिखा रहता है कि सेवाएं कौन कौन सी आपको यहाँ से मिल रही हैं। उर्वरकों के बारे में तो जानकारी है ही, सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। दूसरा फिर ये है कि खेती का फिर उसके बाद जो आदान आ जाता है बीज के बाद, उर्वरक आ जाता है, पोषण आ जाता है। तो पोषण से संबंधित सारे उर्वरक हैं वहां पर उपलब्ध होते हैं। उर्वरक कैसे उपलब्ध होते हैं इसके बारे में आज मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि सरकार को कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ इतना हमें खाद भेजना है, इस क्षेत्र में इतना यूरिया भेजना है, इतना डीएपी, इतना एनपीके भेजना है, इतना सुपर फास्फेट भेजना है, ये कैसे मालूम पड़ता है। उसके लिए एक जो प्रक्रिया है, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे जिला है, वहाँ पर जो कृषि के अधिकारी होते हैं, फिर हरेक जो तहसील में कृषि के अधिकारी हैं, ब्लॉक में है, वो उस क्षेत्र की जो खेती की जानकारी है, जो जो फसलें वहाँ पे लगाई जानी है उनके बारे में वो उनके पास पूरा जानकारी होती है। अब जैसे कि यहाँ पर धान लगना है इस सीजन में, कहीं पर गेहूं लगना है, तो अगर खरीफ में धान लगना है तो धान के हिसाब से कितना उर्वरक की मांग उस फसल की होती है एक एकड़ की, तो वो रकबा देख लेते हैं कि भाई इतना रकबा लगेगा, इतने जो हजार एकड़ धान लगना है, इतना मक्का लगना है, इतना ये लगना है, और इसके हिसाब से इतना पोषण हमें चाहिए, इस पोषण की पूर्ति के लिए ये उर्वरक हमें चाहिए और कब चाहिए, ये भी उसमें इंगित करते हैं। तो ये एक जो है आपका राज्य होता है उसके हर क्षेत्र से अलग अलग रिपोर्ट आती है कि इस क्षेत्र में इस समय पर ये उर्वरक चाहिए, ये उर्वरक चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बीज चाहिए, पूरी जानकारी तो ये जो राज्य सरकार के पास आती है। राज्य सरकार वहां से अपने पूरे राज्य का तैयार करके क्षेत्र वाइज वो जो अपनी केंद्र सरकार को देती है। केंद्र सरकार फिर जो उर्वरक इसको सारे काम को संभालता है, कहाँ कितना देना है, कहाँ से कितना उत्पादन हो रहा है, वो उनको देता है। फिर वो वहां से संयोजित करते हैं कि भाई ये फैक्ट्री है, यहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है तो ये इस समय पर यहाँ इतना माल देगी, ये आयात हो रहा है तो आयात से ये उर्वरक आ रहा है, इसकी इतनी मात्रा यहाँ दी जानी है, इतनी मात्रा यहाँ दी जानी है। उसके पीछे वो ध्यान ये रखते हैं कि जो निकटतम स्थान है वहां से दिया जाए, और जहां से, क्योंकि उसकी वजह से भाड़ा कम लगेगा, क्योंकि हर चीज में खर्चा लगता है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से अगर देखें तो जो भारत अपनी सरकार है उसके द्वारा ही पूरा संचालित होता है, और भारत सरकार की शाखा है उर्वरक मंत्रालय, वह सारा इसको नियोजित करता है। तो जब ये सारा नियोजित होता है तो फिर ये पीएम केयर्स पे आता है। अब पीएम केयर्स के कौन है, ये भी इनके सबके लाइसेंस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ने इनको अधिकृत किया है, लाइसेंस दिया है, अन्य कोई इन उर्वरकों को नहीं बेच सकता है। क्यों, जो इसको बेच रहा है उसको इसके बारे में तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर तकनीकी ज्ञान नहीं है तो उसके सही इस्तेमाल के बारे में वो किसानों को सही जानकारी नहीं दे पाएगा। उसको खेती के बारे में पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब तक क्या था कि पहले लाइसेंस जो थे वो ऐसे ही जो मतलब ओके कर दिए जाते थे, लेकिन अब ये देखा जाता है कि जिस दुकान को लाइसेंस जो मतलब दिया जा रहा है उन्हें खेती के बारे में क्या उनके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा उन्होंने किया है, मतलब खेती से संबंधित ज्ञान उनके पास होना अत्यंत आवश्यक है, उस तरह का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तभी उनको लाइसेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दिया जाता है, अन्यथा नहीं दिया जाता। तो ये सब चीजें जब लिंक करी गई हैं, तो ये इनका समायोजन इस तरह किया गया है कि ये जो खाद की दुकान है ये सिर्फ विक्रय केंद्र न होकर ये जो सलाह के केंद्र भी हो, कोई समस्या खेती में आती है तो उसके समाधान भी ढूंढ के किसान को बताएं और उनको जो भी वो उर्वरक किया, जो भी खेती के आदान लेके जा रहे हैं, उनका सही इस्तेमाल उनके द्वारा हो सके। सही इस्तेमाल के दो जो फायदे होते हैं, पहले तो ये कि आर्थिक रूप से जो खर्चा कम आता है, नंबर एक। नंबर दो यह कि अगर सही इस्तेमाल है तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, फसल को भी नुकसान नहीं होगा, और जो भी आपने प्रयोग किया उससे सिर्फ और सिर्फ लाभ की स्थिति ही बढ़ेगी। तो इस तरह से ये पीएम केस के हमारे यहाँ पे संचालित हो रहे हैं और इनका लाभ किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ले, सलाह ले, जानकारी ले, और जब दुकान पर जाए तो उनसे साहित्य जरूर मांगे कि भाई आप ये जो उर्वरक आया है नया, अब जैसे कि आज की तारीख में बहुत सारे आयातित उर्वरक आ रहे हैं, नए हैं, उनके बारे में हो सकता है किसानों को कोई जानकारी न हो, पहले उन्होंने प्रयोग न किए हो, लेकिन अगर वो आए हैं तो वो बिल्कुल सही है और आपके क्षेत्र की जो मांग है उसके अनुरूप है, लेकिन आपको उसके बारे में क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपको थोड़ी शंका होती है, तो आप वो दुकान से साहित्य ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, फिर जिस जो आयातित यहाँ से आयात हुआ है उसका जो कंपनी का नाम जो नीचे लिखा रहता है उसका एक जो फोन नंबर होता है उस पर आप फोन करके पूछ सकते हैं कि ये आपका उर्वरक आया है, ये क्या है, कौन सी फसल में इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह से मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा मुझे डालनी चाहिए। तो ये सारी जानकारियां आपको इन पीएम केस के द्वारा अब उपलब्ध होने लगी है और उनका आप लाभ लें।
1: मतलब ये है किसान भाइयों की एक ही स्थान पर आपको सभी समाधान मिल जाएंगे।
2: जी बिल्कुल
1: सर, प्रधानमंत्री ने उर्वरकों के उपयोग के बारे में अपना एक बड़ा विशेष उद्बोधन दिया है।
2: जी जी,
1: उसके बारे में हमारे किसान
2: बताएं। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन इस तरह दिया है कि ये जो उर्वरक है इनकी जो अगर हम देखें जो मूल्य है वो कहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही थोड़े मूल्य पर ये किसानों को भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बीच का जो हिस्सा होता है, जैसे मान के चले कि कोई उर्वरक है वो 3,000 रुपए का, अगर वो आपको 266 या 270 रुपए में उपलब्ध है तो जो 3,000 की चीज थी वो 270 रुपए में क्यों मिल रही है, क्योंकि जो बीच का जो हिस्सा है, जो घाटा है, उसको जो भारत सरकार अपनी जेब से दे रही है, उर्वरक मंत्रालय अपनी जेब से दे रहा है, तब आपको वो थोड़े रेट पर मिल रहा है। तो जिस चीज पर इतना खर्च किया जा रहा है उसका अगर सही इस्तेमाल न हो तो वो सबके लिए घाटे का सौदा है, हमारे लिए भी है जो खेती कर रहे हैं, सरकार के लिए भी है और पूरे सिस्टम के लिए है। और दूसरा ये कि जब ज्यादा हम जो इसका उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वो वेस्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे खेत के स्वास्थ्य को खराब करता है, हमारा जो मतलब पीने का पानी है उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाता है, उसकी क्वालिटी को खराब करता है और हमारे जो आसपास का पर्यावरण है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छी उसमें सलाह दी है और बड़े ही ऊर्जावान जो स्थिति में लोगों को इंगित किया है कि आप थोड़ा इसमें सुधार करें, अगर आप सुधार करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो आइए प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनते हैं।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
1: सर, आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो कपास की खेती का प्रबंधन है।
2: जी जी,
1: तो कपास की खेती के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: हाँ, कपास अंग्रेजी में कॉटन बोल देते हैं, और आजकल अगर आप देखें तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कहते हैं मैं तो कॉटन के ही कपड़े पहनता
1: जी।
2: है जी, तो कॉटन एक, और खादी जो हमारी है, खादी वो तो खास तौर से कॉटन से ही आधारित है, और काफी लंबे समय से खादी का प्रचार प्रसार भी होता है, और आजकल तो लोग सौभाग्य समझते हैं कि हम खादी के कपड़े पहनते हैं। अच्छी बात है, एक समय तो खैर ये था कि खादी ही थी तो खादी पहनते थे, आज हमारे पास अल्टरनेट होते हुए भी हम खादी को अगर चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं।
1: स्टेटस सिंबल भी हो गया है,
2: स्टेटस सिंबल भी कह सकते हैं, लेकिन स्टेटस सिंबल ठीक है, हो सकता है, और कुछ लोग क्योंकि बहुत वो हैं जो महंगे हैं तो उनको लगता है कि भाई हम पैसे वाले तो हमने खरीदा, लेकिन ये स्वास्थ्य का सिंबल जरूर है। अगर आप कॉटन जो उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग खेती कर रहे हैं, किसान हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो उगाएंगे तो उनको आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये एक तरह से एक जो क्रम है, तो कपास की खेती अगर हम देखें तो हमारे जीवन का एक मुख्य अंश है, और जितनी भी चीजें हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कपास का योगदान रहता है, उनसे कपास से तैयार होते हैं, तो जो मतलब कपास से जो उत्पादित उत्पाद हैं या जो कपड़े हैं वो एक ब्रांड बनते जा रहे हैं। तो अब हम इसकी खेती ऐसे करें जिससे कि हमें लाभ हो, लाभ के अलावा ये है कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उससे जो भी चीज तैयार हो वो हमारे स्किन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। तो कपास की खेती का अगर हम देखें तो उगाने का समय जो आरंभ होता है वो करीब करीब अप्रैल एंड से शुरू हो जाता है, सभी जगह थोड़ा बहुत अलग रहता है, और ऐसे समय में जो कपास लगाई जाती है जब पूरी तरह से धूप होती है, मानसून नहीं आया होता है, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि भाई मानसून आने से पहले चुगाई की थोड़ी व्यवस्था ऐसी हो जाए कि वो उस टाइम पर ज्यादा पानी पड़ेगा तो खराब भी हो सकती है फसल। ये कपास की खेती के बारे में जानकारी रही, और मेरा कहने का है कि आपके यहाँ पर खुद कपास का इस्तेमाल होता है वहाँ जरूर थोड़ी बहुत कपास लगाइए, चाहे वो आप कॉमर्शियली उसको सेल करने के लिए आप नहीं लगाएं, लेकिन आप अपने इस्तेमाल के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि अब ठंड आने वाली है तो ठंड के लिए आप रजाइयां के लिए आपको रुई चाहिए, तो वो रुई आपको कपास से मिलेगी। पहले खेस बनते थे, चादरें बनती थी, वो भी एक बड़ा अच्छा होता था, और मैं बताऊं आपको कि आज की तारीख में अगर खादी भंडार पर अगर आप कोई खेस लेने जाओगे तो बहुत महंगा मिलता है वो। और अभी एक जो कंसेप्ट और चला है कपास में, ऑर्गेनिक का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई रासायनिक चीज इस्तेमाल नहीं हुई है, वो रासायनिक चीज इस्तेमाल पहले तो होती ही नहीं थी, अब होते हैं, कीटनाशक भी इस्तेमाल करते हैं, फफूंद नाशक भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से कपास की खेती हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। दिया भी हमें जो अगर लगाना है तो उसमें रुई की बत्ती लगाई जाती है, आपने देखा होगा, फिर आरती की जाती है, पूजा की जाती है, तो धार्मिक अनुष्ठान से लेकर हमारे जीवन से संबंधित जितने आयाम हैं उनमें कपास का इस्तेमाल होता है। इसका जो बीज होता है जिसको हम बोलते हैं बिनौला, उससे खास तरह की खल बनाई जाती है, उसका ऑयल भी होता है, वो जो खल है वो जो दूध देने वाले हमारे पशु हैं जैसे गाय है या भैंस है, अगर आप उन जो दें तो उसमें फैट की जो है एक अच्छी मात्रा आती है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है फैट की। अगर वैसे अगर हम सीधे उसका तेल खाएंगे तो उतना स्वाद हमें अच्छा न लगे, और हो सकता है कि उतना वो हजम भी ना हो पाए, लेकिन अगर हमने उसको किसी अपने भैंस को या गाय को खिलाया और फिर उसके दूध से मक्खन निकाल के घी बनाया तो वो हमारे लिए बहुत ही पोषक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग बोल दीजिए, या एक तरह से प्रोसेसिंग बोल दीजिए, तो ये एक तरह से प्राकृतिक प्रोसेसिंग है, और वैसी फैक्ट्रियों की प्रोसेसिंग तो आपने देखी होगी, लेकिन जो प्राकृतिक जो होती है वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही लाभदायक होती है। जो प्राकृतिक प्रोसेसिंग है, जैसे जानवर ने वो खाया, उसने फिर दूध दिया, उससे फिर मक्खन निकला, मक्खन से हमने घी बनाया, फिर हमने उसका उपयोग किया, ये प्राकृतिक प्रोसेसिंग है, तो ये हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्य होता है, और अगर कपास उगाएंगे तो उसका बीज होगा, बीज होगा तो खल होगी, अगर हम उगाएंगे ही नहीं तो ये कहाँ से होगा, नहीं होगी। ठीक है जी,
1: तो सर कपास की फसल में पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: हाँ, कपास की फसल एक जो लंबे समय की फसल है और लंबे समय तक खेत में रहती है, तो इसमें स्वाभाविक जो फसल लंबे समय तक है तो उसको भोजन की भी आवश्यकता उसी तरह से होती है। कपास का एक नाम और था, पहले लोग बोल देते थे, इसको बोल देते थे वन की खेती, वन मतलब जंगल
1: जी,
2: है ना। तो एक तरह से क्योंकि ये जो है आपके लंबे समय तक चलती थी, और भाई खड़ी है, चल रहा है, थोड़े से फूल खिले आप ले आए, तो खास तरह से इसमें आपको उर्वरक देने की आवश्यकता है। और उर्वरक से जो ज्यादा मैं समझता हूँ ये है कि इसमें आप कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद या फसल अवशेष जो हमारे होते हैं उनको सड़ा के अगर कोई चीज आपने तैयार करी है तो वो ज्यादा से ज्यादा इस खेत में आप दे, तो उससे क्या है कि भूमि की जो संरचना है, मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छी होगी, उसमें पानी अधिक समय तक स्थिर रह पाएगा, हवा का आवागमन अच्छा होगा, और जो लंबे अवधि तक वो फसल रहने वाली उस खेत में उसके लिए एक अनुकूल स्थितियां उसमें तैयार हो जाएंगी। जब लंबे समय तक कोई फसल एक खेत में रहती है तो वो वहीं से भोजन लेती है, वहीं पे अपने पत्ते डालती है, वहीं पे वो जो सड़ जाते हैं फिर उनका भोजन बन जाता है, एक तरह से एक साइकिल उसका चलता रहता है। और एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे विनय जी, कि जब किसी खेत में आप जैविक तत्व ज्यादा है या अच्छी मात्रा में है, तो जैविक तत्व मतलब क्या है कि उसमें जीव है बहुत सारे, तो उनको भोजन चाहिए, भोजन को खाएंगे फिर उनका एक साइकिल चलेगा, उससे फिर वो अलग तरह का उनके लिए एक तरह से खाद्य तत्व जो आपके तैयार होंगे। तो अगर आप जैविक तत्वों का इस्तेमाल खेत में कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी जो खेत की मिट्टी है उसकी सक्रियता इतनी अच्छी रहती है कि उसमें कोई भी चीज जो कि जैविक है या जो सड़ने योग्य है वो आसानी से सड़ जाती है और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम ये प्रयास करें कि जहाँ पे कपास लगा रहे हैं उससे पहले उसके खेत की मिट्टी की संरचना को ताकतवर बनाने का अवश्य प्रयास करें, उसमें गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है या फसल अवशेषों की खाद है वो जरूर दें सड़ी हुई, जिससे कि वो तैयार हो। उसके बाद खेत में अच्छी तरह से हल चलाएं और खेत की मिट्टी को ढीला कर दें। उसके बाद जो उर्वरक है, उर्वरकों को हमको जो है उसमें एक तरह से इस्तेमाल करना है, जैसे कि फास्फोरस की उर्वरक है उनमें DAP है, MOP है, ये NPK है, ये प्रयोग कर सकते हैं। आजकल एक उर्वरक और आ रहा है जो कि हम अमोनियम सल्फोइट के नाम से जानते हैं, इसमें सल्फर होता है, इसमें फास्फोरस नहीं है लेकिन सल्फर है और जो नाइट्रोजन है। तो जब हम फसल लगा रहे हैं उस समय पर ये उर्वरक अगर हम दे रहे हैं तो जो शुरुआत की नाइट्रोजन की मांग है और जो सल्फर है, जो सल्फर का काम क्या है कि वो खेत की जो संरचना है या जो उसका pH स्तर है उसको सामान्य करने का काम करती है, और एक तरह से जो भूमि के अंदर पोषक तत्व है वो पौधा अच्छी तरीके से ले सके उसमें वो सहायता करती है। तो अमोनियम सल्फेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक एकड़ में लगभग 40 से 50 किलो खेत जब आप जो मतलब जो फसल लगा रहे हैं उस समय पे, और अगर फास्फोरस के लिए है तो आप कोई भी NPK इस्तेमाल कर सकते हैं, उतनी मात्रा आप चाहें तो जो नाइट्रोजन की कम कर सकते हैं, वो आप जहाँ पे PMK/SK से आप उर्वरक लेके आ रहे हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। पोटाश आप अवश्य डालिए, MOP जिसको बोलते हैं, पोटाश डालिए। पोटाश से क्या है कि रोग को रोकने की क्षमता पैदा होती है, दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर संकर कपास लगा रहे हैं तो उसमें आप चाहें तो जिंक की मात्रा भी आप उसमें दे सकते हैं। अगर आप शुरुआत में नहीं देना चाहते तो जब आपकी 30 से 40 रोज की जब आपकी फसल हो जाए तो उसको पानी में घोल के 350 ग्राम जिंक है और 160 ग्राम चूना। मैं अक्सर चूने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे विनय जी, उसका कारण ये है कि चूना जो एक जो कास्टिक इम्पैक्ट होता है जिंक का उसको कम कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, और फिर वो फसल के लिए हानिकारक नहीं रहता है। तो चूना जरूर डालें, छिड़काव कर दें 100 लीटर पानी में घोल के, और उससे फिर आप देखें कि अच्छा लाभ होगा। और जैसा कि और उत्पाद मैंने कहे थे, जब फूल आने की अवस्था जो स्थिति है उस समय पर एक एरिस गोल्ड करके है, एक पोषक तत्वों का उत्पाद है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे फसल जो पल्लवित रहेगी, फूलों की मात्रा ज़्यादा आएगी और उसका अच्छे से विकास होगा। बहरहाल पोषण शुरुआत की अवस्था से फूल वाली अवस्था तक जब तक आती है या जब तक उसमें फूल के बाद वो बनते हैं जो उसके आपके कपास के डोडे, उस समय तक पोषण आप अच्छे से दें। उसके बाद फिर एक क्रम सा बन जाता है उस समय, उसके बाद फिर कोई ज़्यादा पोषण की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती और फसल अपने आप सर्वाइव करने लगती।
1: सर, कपास की फसल में छटाई का क्या महत्व है और इसे कैसे किया जाए?
2: हाँ, छटाई के लिए क्या है कि जैसे कि आप देखें कि कोई पौधा, या तो ये कि जो जब आप कपास लगा रहे हैं तो उसे उचित दूरी पर लगाएं, जो पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी रहनी चाहिए अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि सघनता है तो बहुत सी जगह क्या देखा कि पौधा सीधा का सीधा चला रहा है, उसमें से शाखाएं नहीं निकल रही। तो जब शाखाएं नहीं निकलेंगी तो उसमें फूल कम आएंगे तो उसका जो फूल के बाद जो उसका तैयार होना है फल, उनकी संख्या कम होगी। जब उनकी संख्या ही कम होगी तो उत्पादन हमें क्या ही मिलेगा। तो छटाई से क्या होता है कि जब हमारा पौधा करीब करीब 4 फीट 4.5 फीट का हो जाए तो ऊपर से उसको थोड़ा छांटते हैं ऊपर के से। तो जब वो आप उसको छांट देते हैं तो वो फिर वो साइड से बढ़ता है, साइड से बढ़ेगा, नई शाखाएं निकालेगा। और जब नई शाखाएं निकालेगा तो उससे फायदा ये होगा कि धीरे धीरे उन पे ही ज्यादा फूल आएंगे तो उन पे फल ज्यादा लगेगा तो कपास ज्यादा होगी। और इसका जो सिद्धांत एक तो ये भी है कि ऊपर से छांट दिया तो साइड से निकालेगा। जब भी पौधे को या किसी भी जीव को संकट लगता है ना, जैसे आपने छांटा तो उसको फील होता है कि मेरे ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है, संकट हो रहा है, तो वो सोचता है कि यार मैं तो खत्म होने वाला हूँ, तो आप शायद फिर वो साइड से अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है उसको अधिक करने में। क्योंकि हरेक जो इस तरह का क्रिएचर है, जो जीवित है, उसकी एक जो टेंडेंसी होती है कि वो अपना अधिक से अधिक फैलाव करे, वृद्धि करे, और उसको आप वंश वृद्धि बोल दें या जो भी बोल दें, एक टेंडेंसी होती है हरेक में। तो इस तरह से वो करता है तो उसका फायदा यही है कि उससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलने की संभावना हो जाती है। हाँ, लेकिन जहाँ पर आपकी छोटे हाइट की है कपास, ज़्यादा हाइट नहीं है, उसमें ऑलरेडी अच्छी ब्रांच है, तो वहाँ आप इसको नहीं भी करें तो कोई।
1: सर, कपास की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए?
2: हाँ, खरपतवार एक ऐसा पौधा है, वो भी बेचारा पौधा ही होता है वैसे तो देखा जाए, लेकिन वो फसल से अलग होता है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए हम उसको खरपतवार बोल देते हैं। उसको और जगह कहीं कचरा भी बोल देते हैं, अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो फसल के अलावा जो भी पौधा आपके खेत में उग रहा है वह खरपतवार है, और उसको हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, उसका भोजन ले लेता है, उस पर अनेक प्रकार के कीड़े आ सकते हैं, उनको संरक्षण दे सकता है। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो वो हमारी फसल के लिए नुकसान करती है। जैसे कि आपका गांव है, उसमें कुछ अनवांटेड लोग आ गए तो वहाँ आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे, है जी, वो आपके लिए संकट खड़े करेंगे। दूसरा, फिर वो खान पान की चीजें भी करेंगे, फिर वो हो सकता है बहुत सारी चीजें वहाँ लेके आए जो आपके लिए उचित न हो। तो इसी तरह से खरपतवार है, तो इनको समय पर इनका नियंत्रण करना जरूरी है। और इनका नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम शुरुआत की अवस्था में ही इनको नियंत्रित जो करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब 20-25 दिन की हो तो एक उत्पाद आता है हमारा उत्तम एटलस के नाम से, 175 ml इसकी दवा आप ले लीजिएगा। और अगर ये नहीं उपलब्ध है तो एक उत्तम फ्लूजी के नाम से आता है, इसकी 400 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से है, और समुचित मात्रा पानी की ले लें और उसमें फिर आप स्प्रे करें। और कपास में आप स्प्रे करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि लाइन से लाइन लगाई तो सिर्फ उनके ऊपर ही कर दें, कोई दिक्कत नहीं, वही कंट्रोल हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छी बात है। और कोई पोषक तत्व तो न मिलाएं इसमें, सिर्फ ये ही आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर है तो कभी कभी बीच में, अगर आपके पास समय है, श्रम है, आपके पास लोग हैं काम करने वाले, तो खुरपी की सहायता से भी अगर एक आध बार आप इनको निकालेंगे तो अच्छा रहता है। और खरपतवार नियंत्रण के बारे में एक विशेष चीज़ जो हम सब लोग अगर इसको करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। कोई भी खरपतवार या ऐसा पौधा जो कि हमें जो हमारे लिए फसल नहीं है, उसके बीज न बनने दें। अगर बीज बनते हैं तो वो बीज फिर हमारे खेत में फैल जाते हैं। जैसे कि आप देखें, एक जो पौधा है अरंडी, तो मैं एक जगह देखता आ रहा हूँ 3-4 साल से, वो अरंडी के पौधे वहाँ उगते हैं, उनसे बीज निकलती है अरंडी निकलती है और वो आके वो उसी जगह पे जो है आपके फैल जाते हैं, साल भर रहते हैं, साल भर नहीं उगता पौधा। और सातवां महीना ये यानी आपका जुलाई का महीना में आते सोते ही वो बीज उगते हैं और फिर पौधे हो जाते हैं। तो आप देखिए वो क्रम है, वो जो मतलब हरेक जो पौधा है वो सीड बनाता है और सीड बना के उनको एक तरह सुरक्षित कर देता है और सही समय पे आके वो उगते हैं। तो बीज अगर आपने रोक दिया कि बीज नहीं बना तो धीरे धीरे कुछ समय बाद इनकी संख्या काफी कम होने लगती है और मुख्य फसल हमारी अच्छे से होगी। तो इसमें जो जो इनको खरपतवारों को हटाने में जो आपका श्रम शक्ति या जो पैसा लग रहा है उसमें जो काफी कमी लाई जा सकती है।
1: सर, कपास की फसल में सिंचाई और समुचित जल निकास का क्या महत्व है और इसे कैसे किया जाए?
2: सिंचाई के बारे में तो ये कहा जाता है कि कपास को आवश्यकता के अनुसार ही सिंचाई दें, बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं देना चाहिए। तो जैसे शुरू में जब आप जो मतलब कपास लगा रहे खेत की तैयारी के समय उस समय पलेवा करते हैं तो खेत में नमी बनी रहती है, मिट्टी अगर आप अच्छे से ढीली कर देंगे तो ऊपर हो सकता है कि खेत आपको सूखा जैसा लगे लेकिन नीचे नमी होती है पौधे की, जहाँ से पौधा नमी ले लेता है अच्छे से, तो वो बहुत जरूरी है। और फिर अगर बीच में आपका ऐसा इलाका है जहाँ पानी आपने कम लगाया है, पौधे आपके मुरझा रहे हैं और तकलीफ ज़्यादा है तो हल्की सिंचाई करें। लेकिन एक सिंचाई जो 35 से 40 दिन पे है जबकि फूल आने की शुरुआत होती है उस

0: जो जो उसका हरित हिस्सा है उसके विकास में लग जाती है, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि एक निश्चित समय पे हमको फसल को हटाना भी है, फिर नई फसल लगानी है। तो ये सिंचाई के बारे में हो गया। दूसरा, फिर आपने कहा है कि निकास के बारे में, अगर कपास के खेत में पानी इकट्ठा होता है तो वो नुकसानदायक, वो जो सुखाएगा पौधे को, क्योंकि जो जो आपका कपास का पौधा है, जो नीचे उसकी शाखाएं या रूट्स हैं, उनको हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पोषण भी चाहिए, सब चाहिए। अगर पानी ज़्यादा भर गया तो हवा नहीं मिलेगी, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेंगे और पौधा जो ख़त्म हो जाएगा। तो पानी के निकास की व्यवस्था उसमें ज़रूर करें, और पानी लगाएं तो वहाँ रहे, ऐसा ना हो कि पानी खुला छोड़ आए और भर गया खेत में और फिर आप टेंशन में आ गए। तो पानी के निकास की व्यवस्था करें। कभी कभी निकास के बारे में देखा जाता है कि निकास के लिए कोई जो है सीधा आपके पास रास्ता नहीं है, कोई नाली नहीं है, या किसी दूसरे का खेत है उसमें आप निकालोगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो जो ढाल वाली जगह है आपके खेत में, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ढाल बनाएं, और एक कोने पर आप जो है खड्डा खोद सकते हैं। थोड़ी फसल तो आपकी खराब होगी तो उसमें वो पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो थोड़ी खराब होगी लेकिन सारी खराब नहीं होगी। तो ये भी एक बचाव का तरीका है, और ये जो निकास का तरीका है ये ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई और आपके पास निकालने के लिए साधन नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर उसमें पानी इकट्ठा रहता है तो कहीं ना कहीं वो खेत में सीप होके जाता है, तो वो अच्छा ही रहता है, फसल को वहाँ से थोड़ा बहुत मिलता रहता है। तो पानी के निकास की व्यवस्था आप अवश्य करें, यह बहुत जरूरी है जबकि आपकी बारिशें हो रही होती है।
1: सर, कपास की जो हमारी फसल है इसमें कीड़ों का खतरा बना रहता है।
0: हाँ, काफी ज्यादा
1: नियंत्रण जो है वो कैसे किया जाए?
0: हाँ, इसमें बहुत सारे कीड़े आते हैं। सबसे पहला कीड़ा है एक सफेद मक्खी, के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जब आप अगर खेत में घुसेंगे और अंदर से जैसे खेत में निकले ना, तो आप देखेंगे छोटे छोटे छोटे छोटे कीड़े आप उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जो मच्छर जैसे, मच्छर नहीं है उसको हम बोल देते हैं व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी ये हरे पौधे पे जाती है, उसका रस चूसती है और धीरे धीरे उसको कमजोर करती है। और इसकी एक और जो विशेषता होती है कि जब ये जाती है तो एक खास तरह का मतलब वायरस जो जो उसमें छोड़ती है, तो उससे सिकुड़ने लगता है पौधा, एक तरह से क्रम्बलिंग टाइप की होने लगती है। इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके लिए एक दवा आती है रेयान के नाम से, हमारी उत्तम रेयान, 400 ml दवा ले लें, करीबन 200 लीटर पानी में घोल के समान रूप से आप इसका छिड़काव कीजिए, तो उससे क्या होगा, कुछ तो खत्म हो जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे वहाँ से, भाग जाएंगे तो अगर किसी दूसरे खेत में छिड़काव नहीं हुआ है तो वहाँ जाके बैठ जाएंगे, घास में बैठ जाएंगे, और फिर जैसे ही असर कम होगा तो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन इसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या इलाज है, जैसे कि मैंने बहुत सी जगह अनुभव किया है कि बहुत से किसान समझदार हैं, वो खेत के चारों तरफ कोई ऐसी फसल लगा देते हैं जिसकी हाइट कपास से ज़्यादा होती है, सघन रूप में लगा देते हैं, तो उससे क्या है कि मक्खी एक बार ख़त्म हो गई तो फिर वो दोबारा किसी और खेत से आपके यहाँ पर नहीं आएगी, और फसल लंबे समय तक आपकी सुरक्षित रहेगी। हमें हमेशा के लिए कोई चीज़ ख़त्म नहीं करनी, हमें हमारी जब तक फसल है तब तक के लिए वहाँ पर वो कीड़ा ना आए, ऐसा हमें प्रयास करना है। तो सफ़ेद मक्की के रोकथाम के लिए आप ये कर सकते हैं। रस चूसने वाले बहुत सारे कीड़े होते हैं, जैसिड है, थ्रिप्स है, ये होते हैं, ये भी जो हमारे खेत फसल करते हैं। तो ये जो मैंने बोला है जो आपके खेत के आसपास कोई ऊंची फसल की बाड़ लगा दें, ये जो इनकी रोकथाम में भी वो जो काम आता है। लेकिन अगर रासायनिक रूप से आप इनको इनका आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो एक फेंटोल नाम की दवा आती है, 400 ml दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका जो छिड़काव कर सकते हैं, उससे इनका जो कंट्रोल होगा। तंबाकू की इल्ली भी इसमें खूब आती है। उत्तम स्पोनजा के नाम से एक दवा है, 168 ml दवा है, ये आप 170 ml या 168 ml जो भी ले लें, 200 लीटर पानी में घोल के इसका जो है आप जो छिड़काव करें। ये और भी जो बहुत सारे कीट हैं, जैसे पिंक बॉलवॉर्म होता है, उसको रोकने में भी काम आता है। इसके अलावा जो एक बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो कि हरी पत्तियों को खाते हैं, उसके लिए प्योटा नाम की एक दवा है, 60 ml दवा है, 60 लीटर है वो, आप जो 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के नाम हिसाब से छिड़काव करें। लेकिन मेरी एक सलाह ये है, देख लें अगर कीड़े हैं तो दवा का छिड़काव करें, अगर नहीं है तो न करें। हमारे खेत में बहुत से सहयोगी मित्र जो जो कीट भी होते हैं वो इन कीटों को खाते भी हैं, तो अगर ये हम बहुत

0: दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मित्र कीट हैं वो खत्म होने लगते हैं, तो जो सुरक्षा तंत्र है, जो प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जाता है। तो इसलिए दवाओं का इस्तेमाल करें, फसल को खत्म नहीं करना, उसको बचाना है, लेकिन थोड़ा समय का इस्तेमाल करें, अति इस्तेमाल न करें। और एक चीज और बता दूं कि कोई भी कीटनाशक या दवा इस्तेमाल करते हैं उसका लगभग 15 दिन तक असर रहता है। तो हम हड़बड़ी में हर हफ्ते कर रहे हैं, 3 दिन बाद कर दिया, वो न कर 15 दिन तक कम से कम उसका इंतजार।
1: सर, कपास की हमारी जो फसल है इसको विभिन्न तरह के रोगों से कैसे बचाया जाए, और अगर रोग हो गए तो फिर क्या उपाय किए जाए?
0: हाँ, रोग हो जाता है तो जो रोग से, जो एक तरह से पौधा खत्म हो गया है, उसको फिर स्वस्थ नहीं किया जा सकता, ये बहुत एक साफ सच्चाई है। हाँ, रोग न हो या रोग हो रहा है तो वो रुक जाए, यह प्रयास किया जा सकता। रोग न हो उसके लिए बीज उपचार एक सर्वोत्तम उपाय है। बीज उपचार, आजकल जो बीज आमतौर पर लेके आते हैं वो उपचारित आते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि उपचारित नहीं करते, उसके साथ वो जो पैकेट रख देते हैं जो है आपके फफूंद ना सके, तो किसान को अपने हाथ से उसको उपचारित करना है। तो जब भी कपास लगाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि बीज आपका उपचारित है या उसको उपचारित हमें करना है, तो जैसा ठीक लगे उसके हिसाब से वो करें, लेकिन बीज को बिना उपचारित किए हुए न लगाएं। ये मेरी जो पहली सलाह है, रोगों को रोकने का जो ये पहला कदम है। उसके बाद फिर आपको अगर कहीं रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो कोई भी फफूंद नाशक, जैसे कि एक लीफ ब्लाइट के नाम से रोग होता है, उसके लिए उत्तम एजोल के नाम से एक दवाई आती है, 200 ml दवा ले लें, 200 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करें। धब्बा रोग होता है, इसके में भी ये एजोल काम आ जाता है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे सारी दवाइयाँ लगभग कॉमन है
1: जी।
0: कोई ज्यादा नहीं है। और एक उकठा रोग आता है, उकठा मतलब पौधा अपने आप सूखने लगता है, इसके लिए M45 नाम की एक दवा है, ये 400 ग्राम दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के जो रूट सिस्टम होता है उस पर आप उसको इसको थोड़ा ड्रेंच करते हैं। तो इस तरह से रोगों की रोकथाम हम जो कर सकते हैं, और लेकिन तरीका यही है कि बीज उपचारित करें, खेत अदलते बदलते रहें। उकठा रोग में हमेशा ये ध्यान रखें कि एक ही खेत में अगर लगातार एक ही तरह की फसल ले रहे हैं तो इस रोग का ज्यादा संक्रमण देखने को मिलता है, और अगर खेत हम अदलते बदलते रहे तो ये संक्रमण इसका इतना नहीं रहता।
1: सर, आपने कपास की फसल के संपूर्ण प्रबंधन के बारे में हमारे किसान साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी
0: जी।
1: आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
2: आपको भी श्रोताओं नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
6: हूँ मैं तो, बहुत बढ़िया हूँ आनंद। तुम बताओ, तुम कैसे हो इस गर्मी में? इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
5: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
6: हाँ, यही कहने वाली थी। हाँ,
5: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
6: बिल्कुल सही।
5: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
6: और स्टूडियो में ना तभी राहत मिल रही है, सच बताओ। बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी मिर्ची वाली धूप लग रही है।
5: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है, बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है और पेड़ क्यों कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है, और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी, जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बेहतर रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। कल तो खैर है वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं, हाँ, और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का, अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजे सब्जियां, दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्रकृति से तो मिलता है।
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुमने देखा है कि हर घर के पास ने एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा है। तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाए ज्यादा से ज्यादा, पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
0: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप, और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मी आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है,
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती थी वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पर कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कहीं हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए, और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है, तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा, और खूबसूरती जो प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे की ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए, ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपनी प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: करेक्ट, सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट, तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कंट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाए, हम चार बार नहाए। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो इससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते हैं भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ, ये
1: घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते हैं तो, लेकिन हम धोने लग जाते ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी? अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना? और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें बिल्कुल, है ना? ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद कर दोगे टंकी तो शायद वो पानी कल आपके और मेरे फ्यूचर के लिए काम आ सकता है। क्यों?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल आपको भी पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में हम कूलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते भी हैं ताकि गर्मी से हमें राहत मिले,
0: उसके अंदर पानी डालते हैं।
1: हाँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो आप कूलर में पानी डालते हैं उसको फेंके ना, उस पानी को बल्कि गमले में डालिए ताकि गमलों को भी पानी मिलता रहे, वो भी स्वस्थ रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और पेड़ पौधों को, और ये बड़ा अच्छा बोला रीना ने, पानी को यूटिलाइज कीजिए। बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो बट उसको फेंको मत, उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इंजनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और हम जो पानी चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट होता है। तो वो वाला पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें या उसको दो घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको
1: ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सके। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी। साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही

0: कहा। तो दोस्तों, आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी, आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास, अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ, फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था। लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे। लेकिन अफसोस, कई घरों में सबसे पहले सवाल यही उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोता को बताइए आप।
3: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
2: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
3: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में, और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
2: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे। लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
3: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
2: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
3: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर से मैं बोलूंगा।
2: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
3: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस है या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
2: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
3: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
3: हाँ बिल्कुल बना सकता है, अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं एकदम, आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी वसीयत अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं, अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
2: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
3: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
2: अच्छा,
3: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
2: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
3: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
2: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
3: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
2: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
3: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
2: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
3: हाँ वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी हैं, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए बिल्कुल।
2: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
3: हाँ वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
2: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
3: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती हैं जो उसके लीगल हायर्स हैं जो उसके रिलेटिव्स हैं जो चिल्ड्रंस हैं उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट्स होने की संभावना रहती है और फिर वो जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट को, आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
2: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
3: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है जिसको उसने ऐसे।
2: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
3: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होकर घर चले।

0: बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
1: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
1: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
0: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है। जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से, कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं।
1: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार। जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुन।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रामाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है, और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वो इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे, जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती
1: है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो एक गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके।
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके। क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो है रिकनसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्गे या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आप कानूनी मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजोल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्बद्ध वसीयत बनवाए जो भी है इस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें, और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए, संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी है और उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात हुई हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसी टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल

0: में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स।
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
3: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यावसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, फ्लूवेनप्लेट और सेफिक्साइमिन जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICEPHD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार भारती के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाये रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
11: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
12: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। जहाँ दोस्तों एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
13: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गांव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
12: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
13: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
12: मुमताज जी की खास बात है, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन।
13: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
12: प्रेरणा। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती, जो 1958 में आई थी, और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
13: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
12: क्या बात ही परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
13: जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई।
12: अरे यार, पता है आपको मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
13: बहुत सुंदर, वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत तो नहीं हो सकता।
12: एग्जैक्टली राइट। और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
13: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे, और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
12: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
13: यस बिल्कुल।
12: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह। तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
14: छुप गए

0: श्रोताओं, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा, क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं, तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था, और वो तरह तरह की नई डिशेस बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का, वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज है, अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या है।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए, उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था अभी, आप मुझसे बता रही थी कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं कोई सहरी बाबू कोई लहरी बाबू,
0: आई रे पग बांध गया घुंगरू मैं छम छम नचती फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमाने कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी और ऐसी ही हमारी बातें चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, हमारे श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों, 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं? तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। उनकी दिनचर्या में रोजाना उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप से नहीं बल्कि मन की शांति और मुस्कान से आ जाती है।
1: खुशी मैम, आपने उनकी सेहत का जिक्र किया है। अब मुझे उनका एक पॉडकास्ट याद आया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शाम को 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और हल्का खाती हैं और समय पर खाना खाती हैं। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, एक अंदर की बात और बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सेहतमंद रहने के लिए, मतलब सेहतमंद का राज ये है कि वो अक्षय कुमार के बताए हुए नियमों पर चलती हैं, उसका पालन करती हैं। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं।
0: तो देखिए, जब इतने खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: खाना समय खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना, ये भी एक मशीन है। आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट हैं और मुमताज मैम भी फिट हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
2: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
1: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच और जिंदगी में भी दिखाई देता है।
1: और आज का हमारा सफर है पूर्वांचल के उस शहर का जिसकी पहचान साहित्य, संगीत, कला और अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत से है।
0: आजमगढ़ एक ऐसा शहर जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं। यहां के युवाओं ने शिक्षा, कला, साहित्य और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन आज आजमगढ़ की कहानी में एक नया अध्याय भी जुड़ रहा है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमिता।
1: आजमगढ़, बिल्कुल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने आजमगढ़ को प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों से बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने का

0: क्षेत्रीय आवागम और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी
1: है। यानी तस्वीर बदल रही है, रास्ते बेहतर हो रहे हैं और इन्हीं बेहतर रास्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं आजमगढ़ के युवा।
0: क्योंकि आज का युवा सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं चाहता, वह अपना काम शुरू करना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करना चाहता है।
1: और इसी सोच को ताकत देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, यानी CM युवा।
0: जरा सोचिए, पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा के मन में कारोबार शुरू करने का सपना हो, आइडिया हो, मेहनत करने का जज्बा हो, लेकिन शुरुआत करने की पूंजी,
1: यहीं पर कई सपने रुक जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआत के लिए वित्तीय सहायता या सहयोग मिल जाए, मार्गदर्शन मिले और सरकारी सहायता का सहारा मिले, तो वही सपना एक उद्यम का रूप ले सकता है।
0: CM युवा का उद्देश्य है युवाओं को रोजगार और उद्यमिक की दिशा में आगे बढ़ाना। योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में परियोजना के लिए लगभग 5 लाख तक का ब्याज मुक्त और बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही परियोजना लागत के अनुसार 10% तक का मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।
1: और इसका लक्ष्य भी बड़ा है, हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर तैयार करना।
0: यानी संदेश साफ है, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने।
1: और आजमगढ़ में इस पहल का असर भी दिखाई दे रहा है। हालिया उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त 2026 तक CM युवा के तहत आजमगढ़ में 5,745 इकाइयों के लिए ऋण वितरण हुआ और जिला इस मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है।
0: वाह, यानी आजमगढ़ में सपने देखे नहीं जा रहे, उन्हें कारोबार की शक्ल भी दी जा रही है।
1: अब मिलते हैं हमारे पहले लाभार्थी से। ये उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद इनके मन में भी एक सपना था, अपना खुद का कारोबार शुरू करने का।
0: सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत के लिए आर्थिक चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी, फिर CM युवा योजना ने इन्हें आगे बढ़ाने का रास्ता दिया।
1: आज इस काम को लेकर उन्होंने कभी सिर्फ कल्पना की थी ना, उसे हकीकत में बदलने की दिशा में वो कदम बढ़ा चुके हैं।
0: आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, सपना क्या था, शुरुआत में क्या मुश्किलें थी और CM युवा से मिली मदद किस तरह इन्हें उड़ान भरने में सहयोग दी।
2: नमस्ते, मेरा नाम राजनाथ चौहान है, मैं ग्राम फजुल्लापुर पोस्ट अंबरपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मास्टर ऑफ आर्ट जो कि एजुकेशन साइंस से है और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हमें सोशल मीडिया के जरिए एक योजना के बारे में पता लगा जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का है, जिसके जरिए हमें पता लगा कि इसके वजह से हमें 5 लाख का लोन मिलेगा जिसमें 10% हमारी मूल मार्जिन मनी रहेगी जो कि हमें सब्सिडी के तौर पे वापस हो जाएगी। तो हम जब ये योजना के बारे में सुने तो हमें कुछ करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से हम काफी उत्सुक हुए और हम अपने नजदीकी उद्योग विकास ऑफिस पे गए और वहां से जानकारी लिए। वो हमें बहुत अच्छी से इसके बारे में समझाया और आज हम इस योजना का लाभ लेते हुए 2 महीने सिर्फ हुए हैं और आज हम अपनी दुकान जिसका नाम राज हाईटेक कार वॉशिंग सेंटर है मुबारक जो कि मुबारकपुर में संचालित कर रहे हैं हम, और आज हम इस योजना से बहुत बहुत खुश हैं। और हम अपने युवाओं को बस एक ही बात कहना चाहते हैं, सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं तो आपको इस योजना का लाभ लेना चाहिए और बहुत अच्छी योजना है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कहते हैं पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई हमें अपने सपनों को दिशा देने का हौसला भी देती है।
0: हमारे दूसरे लाभार्थी भी पोस्ट ग्रेजुएट है, शिक्षा पूरी करने के बाद इनके मन में भी एक स्पष्ट लक्ष्य था, अपना व्यवसाय खड़ा करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है।
1: लेकिन किसी भी नए कारोबार की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है शुरुआती पूंजी और सही वित्तीय सहयोग।
0: CM युवा के जरिए मिली सहायता ने इनके लिए शुरुआती चुनौती को पार करने के लिए जो रास्ता था उसे आसान किया। आज उनका सपना सिर्फ सपना नहीं रहा बल्कि वास्तविक व्यवसाय की दिशा में एक कदम बन चुका।
1: यही तो इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है, जब युवा के पास शिक्षा, हुनर और सपना हो और उसे सही सहयोग मिले तो वो खुद अपने भविष्य की कहानी लिख सकता है।
0: आइए सुनते हैं हमारे लाभार्थी से कि उनके लिए अपने व्यवसाय की शुरुआत का ये सफर कैसा रहा।
3: मेरा नाम अवनीश कुमार राव है, मैं रहने वाला जिला आजमगढ़ से हूँ, बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव बलरामपुर में पड़ेगा। मेरी पढ़ाई MA हुआ है और गवर्नमेंट ITI हुआ है। मुझे बिजनेस खुद का अपना करना था जो कि सोशल मीडिया से मुझे पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आज 5 लाख का प्रोवाइड ये लोन हुआ। काफी मैं इस योजना का लाभ उठाया, 5 लाख लोन का, आज मेरा एक शॉप चल रहा है एक साल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद कहता हूँ और बाकी माननीय योगी आदित्यनाथ जी सर का।
1: तो दोस्तों, आजमगढ़ की कहानी सिर्फ विकास की कहानी नहीं, सपनों को अवसर मिलने की भी कहानी है।
0: एक तरफ बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर आजमगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम युवा जैसी पहल युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दे रही है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहलों को फोकस यही है कि प्रदेश का युवा अपनी क्षमता को पहचान कर स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़े।
0: और आजमगढ़ के इन दोनों युवा उद्यमी की कहानी बताती है कि जब शिक्षा, सपने, मेहनत और अवसर एक साथ आते हैं तो बदलाव जरूर लाते हैं,
1: क्योंकि असली विकास वही है जो रास्ते भी बनाए और उन रास्तों पर चलने का हौसला भी दे।
0: और आजमगढ़ के युवा कह रहे हैं, सपना अपना है, मेहनत अपनी है और अब उड़ान भी अपनी है।
1: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे टिया।
0: और मैं हूँ आरजे दीप।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ में सपनों की उड़ान। फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश की एक और विकास गाथा के साथ।

EMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: दोस्तों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी और लेकर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत सुन सकते हैं एंड किसी को डेडिकेट करने का अगर मन है कोई ट्रैक तो वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ गीत दिलों के बहुत करीब होते हैं, कुछ फरमाइशें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं और कुछ आवाजें जो पूरे दिन को अपना बना देती हैं। तो चलिए अपनी बातों के साथ शुरू करते हैं ब्यूटीफुल कार्यक्रम और बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जी मैं जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से आतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर कैसे हैं आप।
1: बढ़िया।
0: अच्छा ही रहना चाहिए, आपकी आवाज से लग रहा है एकदम, आपने बोला है बढ़िया, एकदम ठीक है। जी जी बताइएगा सर कैसा मौसम है बाहर का।
1: मौसम तो सही हो रहा है, मतलब बादलबाजी हो रही है, बारिश तो करना पड़ रही है लेकिन हवा भी चल रही है, सही है मौसम।
0: अच्छा मौसम है जी बताइएगा, इतना प्यारा सा मौसम है, आज क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: आज मैं फिल्म का नाम है पगला कहीं का गाने के बोले हैं, तुम मुझे यूं बुलाना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
0: अरे वाह बहुत खूबसूरत गीत है मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में।
1: जी जी जी जी, जी। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा।
1: या तो मीना मुन्नी पवित्र अजय आचल आकांक्षा आकाश घाटम तो रामपुर का राम भजन सैनिक।
0: ठीक है सर थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और सुनते हैं खूबसूरत गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का। दोस्तों, प्यार भरे कुछ गीत मोहब्बत का एहसास कराते हैं, कुछ गीत पुराने रिश्तों याद दिलाते हैं और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो बिना कहे दिल की बात कह जाते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार, क्या नाम है आपका
1: जी? देवगली अहमदपुर बाजार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से बाबू अंसारी बात कर रहे हैं
0: जी। बताएगा कैसे हैं आप सब
1: जी? सर मैम हम बढ़िया हैं, मैम आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। आप बताएगा बाराबंकी का मौसम कैसा है?
1: जी मैम, बाराबंकी और हमारे अहमदपुर का मौसम तो अभी पतली धूप तो निकली नहीं हुई है, लग रहा है बारिश होगी, कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई।
0: अच्छा, बादल है वहाँ पर
1: जी?
0: तो वर्षा
1: बादल
0: भी
1: है, मतलब सुबह से है, पर अभी तक कोई मतलब लगा नहीं कि बरसेगा, मतलब धूप भी थोड़ी थोड़ी देर पर निकल जा रही है।
0: ओके, कभी बादल होते हैं तो कभी धूप निकल आती है, राइट
1: जी।
0: तो बारिश हो सकती है, बताएगा आज। हाँ, आज आप क्या सुना चाहेंगे सर?
1: जी मैम, फिल्म का नाम रहेगा ए दिल है मुश्किल और गाने के बोल रहेंगे चन्ना मेरे या अरिजीत सिंह सर जी की बहुत बेहतरीन आवाज में।
0: ओके, और ये ट्रैक आप किनको डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: सबसे पहले मैम आपको और कुलदीप गुप्ता जी हमारे उरौली बाराबंकी से हैं, और मोहम्मद अमीन भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, और सभी सुनने वालों को।
0: ओके, तो आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारे संगीत।
1: आपका नाम क्या है, आपसे किससे बात हो रही है मैम?
0: जी मैं खुशी बात कर रही हूँ
1: जी। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम।
0: थैंक यू एंड सेम टू यू, और एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी ए दिल है मुश्किल। बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म भी है और गाना भी बहुत ही प्यारा सर ने चुना है। तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी से, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक अरिजीत सिंह, साथ में श्रेया घोषाल जी की बहुत खूबसूरत आवाज, और साथ में शहदाब फरीदी एंड अल्तमश फरीदी जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में प्यारा ट्रैक आपने सुना। तो अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी नमस्कार, आपको भी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, आज बारिश हमारे इधर बहुत अच्छी हो रही है, दो दिन से लपक के बारिश हो रही है हमारे इधर।
0: अच्छा, दो दिन से रेगुलर बारिश हो रही है, मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही है।
1: हाँ दीदी, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में काफी कम बारिश हुई थी लेकिन दो दिन से अच्छी बारिश हो रही है।
0: ओके, तो इतना अच्छा सा मौसम है आपकी साइड, बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप।
1: दीदी फिल्म का नाम है बरसात, गाने के बोल है दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा ये वाला गीत सुनना है दीदी।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: धन्यवाद दीदी।
0: सेम टू यू सर, टी एंड वेलकम, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 98 378। अब मैंने दोनों तरह से आपको नंबर बता दिया है, अब जल्दी से लगाइएगा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजी खुशी। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बरसात मूवी का ये प्यारा सा ट्रैक। कुमार सानू जी की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खासर से बहार और हसन सिद्दीकी को बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बस अच्छे हैं मैम, बढ़िया है।
0: अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: देखिए, फिर अपनी पसंद से सुनवा देना, नहीं तो देश के गुलाम फिल्म का गाना था, उसमें से कोई भी गीत सुनवा देते आप तो
0: जी
1: और भी अच्छा रहता।
0: ओके ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपकी पसंद का। जो आपने मूवी बताई है उस मूवी का कोई भी ट्रैक। ठीक है
1: जी, ठीक है, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं सर की पसंद का एक प्यारा सा ट्रैक एंड लौट कर मैं आने वाली हूँ। जब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। समय हुआ है 3:47 और आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। अपना कोई भी पसंदीदा गाना अगर सुनना चाहते हैं तो हमें तुरंत कॉल लगा सकते हैं। आप हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 98-378-96-896। और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी
1: क्या हाल है?
0: मैं ठीक हूँ सर, आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप? हाँ बताइए, कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: ये बताइए कि आज आनंद जो इंदाद मॉर्निंग में सुनने आ रहे थे।
0: सर जी,
1: आज आनंद जो है इंदाद मॉर्निंग में नहीं आ रहे, क्या बात है?
0: वो बहुत जल्द आएंगे शो में, आप चिंता मत कीजिएगा। बताइए। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत जल्द आएंगे सर, बताइएगा आप आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: देश प्रेमी का गीत सुनना है।
0: देश प्रेमी मूवी का? आपस में प्रेम करो। जी बहुत प्यारा खूबसूरत सा ट्रैक है एंड मैसेजफुल ट्रैक है, क्योंकि इसमें एक खुद ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है कि देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो। और मुझे लगता है कि सर आपस में प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारे होना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद सर, आपने कॉल किया, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजी खुशी आपके साथ है, आपकी दोस्त। और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ जाइएगा जल्दी से, जिन्होंने अभी ऑन किया है ना। हमारे जो न्यू लिसनर हैं, जो अभी अभी कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, मैं उनको नंबर बताना चाहूंगी। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस नंबर पर जल्दी से कॉल लगाइए और अपना फेवरेट गाना सुनते जाइए। तो बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, आदाब।
0: आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मैं रामपुर से बात कर रही हूँ।
0: हाँ, रामपुर से बात कर रही है। अपना नाम तो बताइए।
1: मैम कहते हैं कि मैं बागों की बुलबुल हूँ, सभा में उड़ना काम है मेरा। बागों की बुलबुल हूँ, सभा में उड़ना काम है मेरा। हिंदू मुसलमान एक है, लोगों को यही पैगाम है मेरा। सितारे करते हैं मुझसे बातें, इसीलिए तो क्षमा कर लो नाम है मेरा।
0: अरे वाह, क्या बात है शमा, आपने तो चार चांद लगा दिए। हाँ बताइए, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप?
1: मैम मैं बहुत ही अच्छी हूँ, और आज मेरी कॉल लग गई और आपसे मेरी बात हो रही, तो मैं और भी अच्छी हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब। तो कैसे लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और मैं सभी को, सभी श्रोताओं को और इमाम हुसैन, मतलब इस्लामी मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी रेडियो डीएफटी वर्ल्ड की ओर से और रामपुर की ओर से।
0: तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: मैम मुझे सुनना है, मूवी का नाम है नियाज़ुन नमाज, तो गीत के बोल रहे हैं कि तेरे दर पे झुके मेरा सर।
0: ओके,
1: और मैम मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगी कि आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे तशरीफ लाए थे, उनकी शान में कुछ लाइनें कहना चाहूंगी।
0: इरशाद।
1: आमीन कहते हैं कि हम सुन्नी है सुन्नी हर घर में झंडा लहराएंगे, हम सुन्नी है सुन्नी हर घर में झंडा लहराएंगे, जिसमें ईद मिलादुन नबी हम हर साल मनाएंगे, और आप भी जलाना प्यार की शम्मा, सुना है आज की रात हमारे नबी तशरीफ लाएंगे।
0: बहुत खूब।
1: और मैम कहते हैं कि वो दिन वो पल वो घड़ी कितना निराला होगा, वो दिन वो घड़ी वो पल कितना निराला होगा, जिस माँ ने हमारे नबी को अपनी गोद में पाला होगा, और चांद सूरज भी न कर सकेंगे आपका मुकाबला, मेरे नबी से हर घर में उजाला होगा।
0: बहुत ही खूबसूरत। और ये खूबसूरत से गाना आप किन के साथ सुनना चाहती हैं?
1: मैम जैसे मेरी छोटी बहन है सादिकी, और निखत फातिमा, अफरोज फातिमा, रुकैया फातिमा, लाइवा फातिमा, और पक्का वासिंग पम्मी जी, और गांधी समाधि से हार्दिक गप्पा अंकल।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए,
1: शुक्रिया मैम।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:02 और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। गुड इवनिंग सर, क्या नाम है आपका?
1: सलमान अख्तर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, तहसील नजोबाद, गांव सरायमा, पोस्ट किरतपुर।
0: जी आपने तो पूरा एड्रेस बता दिया है सर।
1: जी हाँ, हम दूर के श्रोता है तो बताना पड़ता है।
0: एग्जैक्टली राइट जी, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: जी हम यहाँ पे शिवालिक कॉलेज देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कर रहे हैं जी।
0: ओके तो बताइएगा वेरी गुड, उत्तराखंड का मौसम कैसा है सर?
1: जी उत्तराखंड का मौसम इस समय ठंडा है, बारिश तो नहीं है, बादल हो रहे हैं।
0: अच्छा बादल हो रहे हैं, बताइए आप क्या सुनेंगे आज?
1: जी हम अभी सुनना है सांसों का चलना, दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है, और मेरे कुछ दोस्त हैं
0: जी,
1: समा प्रवीण जी रामपुर से जो अभी कॉल पर थे।
0: हाँ जी।
1: और कामिल जी कांच से, और मुकेश भाई मुरादाबाद से, फरमान भाई मुरादाबाद से, और अलीबा जी मुरादाबाद से, और सभी दोस्त सुनने वाले।
0: ठीक है, सभी के साथ सुनाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा।

0: एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हेलो फरमाइश शो में। मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजी खुशी। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक उदित नारायण जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। यस, क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? सॉरी,
1: नाजमीन।
0: नाजमीन कहाँ से बात कर रहे हो?
1: जी, मुरादाबाद से।
0: ओके, मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा आज क्या सुनेंगे
1: आप? स्टूडियो सब कैसे हैं?
0: स्टूडियो में ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं।
1: मैंने आपको गुड आफ्टरनून कहा था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: हमने गुड इवनिंग बोला आपको, आपने सुना ही नहीं।
1: अच्छा, सॉरी।
0: ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। बताइएगा ये गाना आप आज कौन सा ट्रैक सुनना चाहती हैं और किसके लिए सुनना चाहती हैं?
1: नहीं, मुझे अच्छा लगता है गाना, इसलिए मैं अपने लिए सुनना चाहती हूँ।
0: खुद के लिए ना?
1: जी हाँ जी।
0: हाँ, कुछ गाने ऐसे भी होने चाहिए ना, हम सबके लिए सुनते हैं, कभी कभी खुद के लिए भी सुनना चाहिए।
1: अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
0: एग्जैक्टली राइट। तो सुनवाते हैं पहला गाना आपको, आप एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। मैं बस लौट कर वापस आने वाली हूँ, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और जल्दी से फोन लगाइए। नंबर मैं अगेन आपको बताती हूँ, 9837896896।
2: ओह, देयर शी इज।

0: देखिए दोस्तों, हम तो अपने वादे के अनुसार आ चुके हैं आपसे मुलाकात करने, बात करने आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। और ये ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया बी पराग जी और साथ में पायलदीप जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अभी। हेलो फरमाइश
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जी दीदी, ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब।
1: जी दीदी बहुत बढ़िया हूँ, बस प्रोग्राम सुन रहा था और बस मन किया, फिर मैंने फोन मिलाया आपसे बात हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: धन्यवाद सर, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी।
1: आज फरमाइश है छोटी बहन फिल्म का गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है,
0: एक हजारों में मेरी बहना है।
1: हाँ दीदी, और दीदी आ जाइए आप राखी बांधने के लिए।
0: अरे सर इतनी दूर, अच्छा आप हमें इनवाइट कर रहे हैं, आप भी तो आ सकते हैं ना मुरादाबाद।
1: हाँ जी दीदी बिल्कुल आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं।
0: हाँ
1: बहने भी आ रही है, दोनों बड़ी है मुझसे।
0: अच्छा
1: तो मैं उनको छोड़कर अब वहाँ पर आऊंगा, इसलिए आप यहाँ पर आइए।
0: ओके, तो हमारे भी तो भाई हमारा इंतजार करते हैं ना सर।
1: बिल्कुल,
0: ये रिश्ते
1: इंतजार करते हैं।
0: हाँ जी, रिश्ते बड़े ही खूबसूरत होते हैं, सबके घर पर बहनें आती हैं, कुछ भाई बहन के घर जाते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी, तो सुनवाते हैं।
1: अच्छा लगता है जब त्योहार आते हैं, अच्छा लगता है, और सबसे बड़ा ये रक्षाबंधन जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि छोटी बहनें भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं।
0: बिल्कुल,
1: छोटी का अधिकार ज्यादा होता है कुछ।
0: और फिर ऐसा भी होता है ना सर, देखिए शादी के बाद सबकी अपनी लाइफ में सब लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन जब फेस्टिवल आते हैं और एक राखी फेस्टिवल ऐसा होता है जिसमें सब बहनें साथ मिलती हैं, भाई साथ मिलते हैं, वो बचपन की पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं।
1: हाँ जी
0: जी तो सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया सर।
1: जी नमस्कार,
0: आपको भी नमस्कार। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और आप भी कॉल लगाइए, शायद आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शोर चल रहा है हेलो फरमाइश, और अभी आपने सुना ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार, आशा भोसले और साथ में उषा मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत गाना। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी। सर क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद रिजवान
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी सर सुनाबर आया
0: जी। बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम, आप सुनवाएं?
0: हम भी ठीक हैं सर। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: स्टूडियो में सब बढ़िया है।
0: हाँ जी, स्टूडियो में सब बहुत अच्छे हैं सर। बताइएगा कौन से गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: गाने के हो फरमाइश है तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: ओके ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा गीत आपको। आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ एंड सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं प्यारा गाना, मैं वापस आती हूँ अभी। तब तक आप भी कॉल लगाना बिल्कुल भी मत भूल जाना।
2: तुम भी गाओ

0: क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना। एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था श्रेष वाटिकर साथ में अनुराधा पौडवाल जी ने। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, कैसे
0: जी? मैं ठीक हूँ, आप अपना नाम बताइएगा।
1: मेरा नाम शिवकिशोर वाडल
0: जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैं आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा आप, आज कॉल किए हैं आपने, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरी फरमाइश है, क्या तुम्हें पता है दिल से मेरे दिल भर आने
0: वाले। ओके, तो ये गाना आपको सुनवा देते हैं हम सर। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। शिव गौतम जी की फरमाइश है इस प्यारे से गाने की, तो सुन लेते हैं, उसके बाद आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: तो दोस्तों अभी आपने एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी संगीत से अनुराधा पौडवाल जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज सुरेश वाडेकर जी दे रहे थे साथ, और अब्बा कोई तो बता दे। वैसे हम आपको बता देते हैं हमारा ऑफिशियल नंबर 9837896896, इस पर आप कॉल लगा सकते हैं और खुशी से बातचीत कर सकते हैं, अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश
0: जी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: हम शमशाद अंसारी बोल रहे हैं बिलारी से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
0: हम भी ठीक हैं सर, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैं गाना सुनवा दीजिए, फोटो पे आए सारी दुआएं।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है
1: जी।
0: जी किनके साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: हम केवल अपनी वाइफ के साथ में सुनना चाहते हैं।
0: ओके ठीक है, आपकी मैम के साथ सुनवाते हैं प्यारा गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप ट्राई कीजिए।

0: गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजी खुशी है आपके साथ और शो चल रहा है हेलो फरमाइश, जहां पर आप मुझे कॉल करके अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। चाहे आप सफर में हो, घर में हो, फैमिली के साथ हो, या फिर कहीं अगर आप वर्किंग हैं तो वहां पर अगर फ्री हैं तो कॉल लगा सकते हैं आप, वरना तो आप इंजॉय करो यार, क्या प्रॉब्लम है ना। फ्री में अगर हमें एक से एक गाने सुनने को मिल रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और ना कोई डिस्टर्बेंस होता है। मतलब कहने का ये है कि देखिए, ना बार बार हमें फोन को, जैसे अगर हम सोशल मीडिया पर, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रैक सुनते हैं तो हमें बार बार कभी ऐड आते हैं, कभी कुछ ना कोई इशू रहता ही है, उसको बार बार टच करना पड़ता है। लेकिन रेडियो, एंड आजकल रेडियो भी डिजिटल हो गया है, तो आप एफएम मुरादाबाद 89.6 का ये एप्लीकेशन है जहां पर आप आराम से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से सुन सकते हैं। एक जगह ऑन करके रख दीजिए साइड में और अपने काम भी करते रहिए, इजिली सुनते भी रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइएगा।
1: गजराज लोधी बात कर रहा हूँ, रेला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी बहुत अच्छे हैं। इस वक्त आपका प्रोग्राम सुन रहे थे तो अच्छा लग रहा था, प्रोग्राम एक नंबर जा रहा है।
0: थैंक यू। और आपने सोचा कि हम भी कॉल कर लेते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो आज आपने कॉल किया है, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: आदमी खिलौना एका है, मत कर इतना गुरूर सूरत से।
0: ओके, और ये ट्रैक किनके साथ सुनना चाहते हैं, कौन है आपके दोस्त?
1: ये हमारे दोस्त है राम बाबू शर्मा जी, केसरी सिंह राजपूत जी और किलान सिंह मीना जी, आरिफ खान मंसूरी जी।
0: ओके,
1: और अभी वो प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं बराबर।
0: ठीक है, तो आपके
1: लिए भी दीदी
0: थैंक यू। और आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं प्यारा गाना, शो में कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका। नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने अपनों के साथ रहिए। इस सफर को भी खूबसूरत बनाइएगा आप, एंड हाँ, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा और मुस्कुराते रहिए। बाकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आती रहती है एंड समय कभी नहीं रुकता है, वो चलता रहता है। तो कभी सुख कभी दुख, दोनों चीजें आती हैं। बट हाँ, सुख में ये होता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि वो टाइम कैसे निकल जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, हम खुद अकेले होते हैं, तो वो समय बहुत मुश्किल वाला लगता है। तो समय, लेकिन समय है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो बस आप भी चलते रहिए, लाइफ में सब चीजें बेहतर होंगी एंड खुद पर और ऊपर वाले पर हमेशा बिलीव रखिए, भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। और ये प्यारा सा गाना सुनते जाइएगा, मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
7: इंडिया टुडे स्टैंड्स एज द फास्टेस्ट।
8: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
7: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
6: दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरु ओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में केरला वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। इवनिंग मस्ते शो में समय की बात करो तो 5:05 हो चुके हैं और आज जरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है और करेंगे अब हम ढेर सारी बातें। और आज की तारीख है 26 अगस्त, यानी कि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ अपने मुरादाबाद की बात करने वाले श्रोताओं। और आज की तारीख बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, और आज से लेकर यानी कि 29 तारीख तक यानी कि बहुत ही खास डे है। और जो अपने घर जाना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से आप जा सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास हर अपडेट मिलती रहे, तो उसके लिए हमारे साथ आपको कनेक्ट रहना है। ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और साथ ही साथ वेदर की बात करने वाले, कल का वेदर है बहुत कूल वाला वेदर बताया जा रहा है, यानी कि बारिश की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है, यानी कि सुबह 3 बजे से ही बताया जा रहा है। लेकिन कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है बारिश, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर कनेक्ट होंगे जी। ओके okay?

0: अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
1: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

क्या बात है, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है जी। आरजे रीना के साथ फिर से आप कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं, यानी कि समय की बात करूं तो 5:17 हो चुके हैं और आज की तारीख 26 अगस्त, और अभी आप ऑन द वे हैं, यानी कि भैया ऑफिस से निकल चुके हैं और निकलने की तैयारी। एक बार वैसे आज तो सरकारी दफ्तरों की आज छुट्टियां भी थी, है ना? मुझे पता है, लेकिन हम तो है आप सभी के साथ कनेक्ट। देखिए, अगर हम छुट्टियां ले लेंगे ना तो आप सभी तक अपडेट कौन पहुंचाएगा? और साथ ही साथ सच बताओ, जिस दिन छुट्टी होती है ना, हम एक्चुअली सुबह से प्लानिंग करके रखते हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन हम जो सोचते हैं ना, जिस हिसाब से हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि बिना सोचा हुआ काम आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिसकी आप प्लानिंग करेंगे वो काम आप नहीं कर पाते हैं। और साथ ही साथ यानी कि अगर आप सरकार ने, यानी कि हमारे योगी सरकार जी ने बस की सेवाएं हैं वो फ्री कर दी गई हैं। कल से जो भी बहनें अपने भाई के घर जाना चाहती हैं, ट्रैवलर करना चाहती हैं, बिल्कुल फ्री में कर सकती हैं। और जो दूर दराज के रहने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार का उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आसानी से घर निकल सके। क्योंकि त्योहार आते ही ना, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो, कुछ भी हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर कोई शहर की गलियां छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना होता है। और शहर वाले दिन ना, मतलब जो त्योहार वाले दिन जो शहर की गलियां है वो थोड़ी थोड़ी फीकी और सूनी पड़ जाती हैं, और गांव की जो गलियां है वो रौनक भरा हो जाता है। यानी कि हर कोई अपने परिवार के साथ कोई भी फेस्टिवल हो, त्योहार फैमिली वालों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब अकेले रहते हैं ना, तो आप खुद समझ नहीं पाते हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि क्योंकि अकेला इंसान क्या ही कर लेगा। मतलब वो अपने लिए सोचता है कि हाँ ठीक है मैं कुछ कर लेता हूँ, पर वो कर नहीं पाता। और जब सब साथ होते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी काम हो ही जाता है आसानी से। फिलहाल आप सभी से यही कहेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले, और आप घर पर भी जा रहे हैं तो अपने सामानों का ध्यान रखें। बाहर अगर आप निकल जाए ट्रेन में, तो भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, अपने गांठ बांध लेनी है। कि ट्रेन में अगर आपको कोई, मान लीजिए आपकी अच्छी दोस्ती खासी बन भी जाती है, तो आपको नहीं पता उस इंसान के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उसको आपने जो आपसे वो कुछ खाने के लिए भी दे रहा है ना, तो वो आपने बिल्कुल नहीं खाना है। चाहे पानी ही क्यों ना हो, बिस्किट ही क्यों ना हो, हालांकि वो खरीद के लाया है दूसरे शॉप से और आपको बोले कि चलो शेयर कर लेते हैं, एक ले लो कोई बात नहीं, तो भी आपने नहीं लेना है, नहीं खाना है। आप अपने पैसे का खाइए, अदरवाइज मत खाइए। लेकिन सफर में कभी किसी से लेके कुछ भी मत खाइए, इस चीज का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। और 6 बजे एक मैम हमारे साथ कनेक्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैं, जिस पर हम ढेर मतलब आज जो टॉपिक रहेगा हमारा किशोरावस्था, उस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब बच्चे टीन एज से क्रॉस करते हैं तो उनके अंदर बहुत से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम ना हॉपलेस हो जाते हैं एकदम, कि आखिरकार हमारे बॉडी के अंदर ये चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, डर जाते हैं और कभी कभी अफवाहों के चक्कर में ना फंस जाते हैं और गलत चीजें हैं, मतलब गलत गलत मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। तो आज मैम हमारे साथ कनेक्ट होंगी और करेंगे हम ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आपको हमने गाना सुनवाते हैं। करेक्ट 6 बजे आप कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूलिए जी, ठीक है? चलिए

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: की रखे मेरे टेंशन मैं सबको ठीक कर दूंगा।
5: हाँ जी
4: चल कर दा कर अभी बथेरी उम्र भैया।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
3: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
2: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 31 मिनट हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, चीनी के महंगाई के बाद यानी कि जो स्वीट मिठाई आप बाहर से खरीदेंगे उसमें 30% की बढ़ोतरी दिखाई गई है, यानी कि 30% यानी कि जो दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। जो भी आप बाहर से रक्षाबंधन का त्योहार है और बाहर से देखिए मिठाई है तो हर कोई ऑफकोर्स खरीदता ही है, तो उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। और साथ ही साथ जो आप बाहर 10 रुपए की चाय पीते थे, अब वो चाय आपको 15 रुपए की मिलने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चीनी की दाम बढ़ी, इसलिए यानी कि बाहर की चाय और मिठाइयां भी आपको महंगी मिलने वाली है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि देखिए चीनी में ना हल्का यानी कि रेट थोड़ा कम हुआ है, हालांकि अब मिठाइयों की जो रेट है वो कम नहीं होने वाले है, जब तक रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन खत्म न हो जाए तब तक नहीं होने वाला है, और ये तो मुझे लगता है दिवाली तक ऐसे चलने वाला है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं आप भी महसूस करके बता सकते हैं। लेकिन देखिए चीनी महंगी तो हो गई है, लेकिन अभी भी घरों में भाई सच बताऊं तो अगर आप वैसे मैं हमेशा आपसे बोलती हूं कि ज्यादा शक्कर वाली ज्यादा चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शुगर हमें हल्का जो शुगर की क्वांटिटी है उसका हमें कमी रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस कम हो।

देखिए चीनी जब जब जब हम ज्यादा लेते हैं तो एक तो हमारा वेट बढ़ता है और साथ ही साथ और भी बॉडी में सिंजिस शुरू हो जाते हैं, तो इसका हमें अवॉइड करना है। और बस हेल्दी रहिए और हेल्दी खाना खाइए और गाना सुनते एक बहुत ही शानदार वाला।

0: हेलो जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने गाना सुना है। सच में सुनिंदा शर्मा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना, मतलब जो ये गाना गाती है ना, सच में दिल से गाना गाती है। मतलब एक ऐसी आवाज जो हर इंडस्ट्री को, हर चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, हर किसी को इनके गाने बेहद पसंद आते हैं। और आई होप किसी ना किसी का ये गाना फेवरेट वाला भी होगा। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हो, समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 42 मिनट हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और 28 तारीख को रक्षाबंधन है। तो साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो शुभ मुहूर्त है उसके, यानी कि जब शुभ मुहूर्त पर आप राखी बांधते हैं तो
1: ओ कुड़ी तेरी लुकते सड़का ते फिरे तेरी कार लबदी,
0: तो और भी शुभ माना जाता है। और सुबह का यानी कि जो शुभ मुहूर्त है वो बताया जा रहा है। क्या बात है, बता दे जी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा इंतजार तो करवाना बनता है। उसके लिए आपको वेट इंतजार करिए, एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर लौट कर आएंगे और फिर बताएंगे कि सुबह का जो मुहूर्त है उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। क्योंकि अब इस बार रक्षाबंधन पर भी भद्रा काल पड़ रहा है भैया, पता नहीं क्या क्या चीजें भाई रक्षाबंधन पर ही ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, राखी है ना, यानी कि शुभ मुहूर्त पर ही बांधना सबसे अच्छी बात है, तो शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद बात करने वाले श्रोता। फिलहाल आप गाना एंजॉय करिए।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:50 हो चुके हैं और आप आज जरीना के साथ कनेक्ट है। और आज की तारीख यानी कि 26 अगस्त और अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बादलों से घिरा हुआ आज का वेदर। लेकिन उमस वाली गर्मी है भैया, आप ये सोच रहे होंगे कि चलिए इतनी धूप नहीं है, लेकिन उमस वाली तो गर्मी है ना। लेकिन कल और परसों बताया जा रहा है कि मौसम सही रहने वाला है और कल बारिश आने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यानी कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, यानी कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन है और ये कहा जा रहा है सुबह का शुभ मुहूर्त है, यानी कि 5:57 से लेकर 9:48 तक, यानी कि 5:57 से लेकर 9:48 तक है। और अगर आप इस विच नहीं बांध पाते तो एक और मुहूर्त बहुत ही शुभ है, उत्तम है, ये है यानी कि सुबह 7:33 से सुबह 9:10 तक। और लास्ट अगर मैं सुबह के ही मुहूर्त की बात करूं तो सुबह 9:00 से लेकर 10 यानी कि 9:10 से लेकर 10:46 तक और रहने वाला है शुभ मुहूर्त। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो 11:00 से पहले पहले आप राखी अपने भाई के कलाई पर बांध सकते हैं, यानी कि 10:45 से पहले पहले आप राखी बांधिए और अच्छे से सेलिब्रेट करिए। बहुत सोचेंगे कि भैया हम तो उठ ही नहीं पाते हैं, अब क्या ही करें। देखिए जी, त्योहार का मौका है और जब कुछ चीजें गड़बड़ होती है तो वहां पर आप ठीक करने के लिए अपनी नींद को थोड़ा सा बोल सकते हैं बाय बाय, उसके बाद आप दिन में सो सकते हैं आराम से। लेकिन साथ ही साथ अब 6:00 में बस 7 की देरी है और हमारे साथ मैम कनेक्ट होने वाली है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो उनसे ढेर सारी बात करेंगे कि किशोरावस्था के समय बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं और उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना सही जानकारी ही आपको सही मार्ग पर लेकर जा सकता है और वही आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम कभी कभी अलग अलग भ्रांतियां हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन में पड़ जाते हैं, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया से हम वीडियो देख लेते हैं और सोचते हैं कि यही सबसे अच्छी बात है, तो उस चीज को ना फॉलो करें क्योंकि हर सोशल मीडिया पर चीजें आपको अच्छी नहीं दिखाई जाती हैं, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक प्यारा मैसेज भी आया है मेरे पास, चलिए उनको शामिल कर लेते हैं। दीपक जी मुरादाबाद से गुड इवनिंग पहुंचाते, वेरी गुड इवनिंग जी। रीना दी नमस्कार, ग्राम चम जिला संभल से अरुण जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सभी दोस्तों के साथ और एफएम मुरादाबाद रेडियो सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनेंगे और बहुत ही शानदार वाला, नेहा कक्कर की आवाज में ये गाना है दो गल्ला करिए। देखिए इस जिंदगी में ना बस चुप नहीं रहना है, हम जब चुप रहते हैं ना तो बहुत

साथ ही साथ अगर कोई आपका डाउट है तो भी आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके आपके जो डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं. रीना जो बोलती है ना, चुप नहीं होती है वो.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, गलत भ्रांतियां है जो हम उनको सुन लेते हैं और उसको ही अपने लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचे और तभी आप फॉलो कर पाएंगे। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने के लिए आज मैं आई हूँ विमेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर सोना मैम कनेक्ट है। तो मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी पहले तो आपके बारे में।
1: नमस्कार रीना जी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला जिला अस्पताल मुरादाबाद में।
0: मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आखिरकार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती
1: है? देखिए, किशोर अवस्था एक बहुत ही उम्र का ऐसा पड़ाव है जब एक बच्चा अपने उसका बचपन खत्म हो रहा है और वो वयस्क होने के रास्ते पर है। तो अभी उसका बचपन पूरा खत्म नहीं हुआ है, शरीर में और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत से बदलाव आते हैं। शारीरिक तौर में बहुत सारे हॉर्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्टहुड में प्रवेश करता है, और मानसिक बदलाव भी इसलिए आते हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत नए तरीके के विचार आते हैं, बहुत नए तरीके से वो दुनिया को देखता है, दोस्तों से उसकी बातचीत होती है। तो वो ना बचपन में है, उससे बच्चों से उसको ज्यादा पता है, और ना वो भी वयस्क हुआ है
0: जी।
1: उसको लगता ये है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन फेज है, बदलाव वाला है, बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि हॉर्मोन्स क्योंकि बदल रहे हैं तो इसलिए जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये चीजें जो मुझे नई बातें पता चल रही हैं ये सही है या नहीं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ये किशोरावस्था रहती है, टीनेज, जिसमें बच्चे एक बीच वाली एज की स्टेज में है, अपने बचपन उनका खत्म हो रहा है और वयस्क होने के, जवान होने के उसमें आ रहे हैं,
0: मतलब 12 के प्लस होने के बाद।
1: हाँ,
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे के शरीर के साथ साथ उनके व्यवहार में, सोच में अचानक बदलाव क्यों आने लग जाते हैं और इससे वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि अचानक मेरे अंदर ऐसे चेंज क्यों आने लग गए हैं?
1: बिल्कुल घबरा जाते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनके हॉर्मोन्स का है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों अपने एडल्ट फेज में जाते हैं तो शरीर में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। वो बदलाव का जो टाइम है वो यही किशोरावस्था के दौरान ही शरीर में सारे बदलाव होते हैं, उससे दिमाग पे, हॉर्मोन्स के लेवल पे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, और मानसिक तौर पे इसलिए वो घबरा जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से ज्यादा उनको चीजें पता है, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, बच्चे आपस में बात करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें उनको पता चलती है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि ये ज्ञान जो है वो उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा ज्ञान है। और नई चीजों के बारे में पता चलता है तो बच्चों के मन में क्रेज बहुत होता है, बच्चों के मन में क्रेज बहुत ज्यादा रहता है, और उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम वो थोड़ा माँ बाप से भी अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो, समझे ना, उनको गलत ना समझ लें
0: जी,
1: ये चीजें रहती हैं।
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा अपने शरीर में बदलाव को लेकर डर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता है उनकी हेल्प कैसे करे?
1: माता पिता सबसे पहले तो ये पहले से समझ लें कि बच्चा जिस बदलाव से गुजर रहा है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, तो बच्चे का व्यवहार थोड़ा शुरू से बदला हुआ हो सकता है। उसमें माँ बाप जो है वो जजमेंटल ना हो जाए एकदम से, अपने बच्चे को पहले से ही कोई विचार ना बना ले, पहले से ही कोई बायस ना बना ले कि ये इसके दोस्तों का ग्रुप हो गया है इस वजह से बच्चों में चेंज आ रहा है, या इसने कोई गलत चीजें कर ली होंगी इसलिए चेंज आ रहा है, या ये बड़ा हो गया है हमारी बात नहीं मान रहा है, उनको ये समझना होगा
0: जी।
1: तो अपना दौर भी ये याद करना होगा कि कुछ सालों पहले हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे मन में भी क्या चीजें आई थी, वही सब चीजें अब इन बच्चों के मन में भी आ रही होंगी। तो अगर हम इनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो ये दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेंगे जानकारी के लिए
0: जी, जी,
1: जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे बड़े जो शुभचिंतक है वो उसका परिवार ही होता है, तो माँ बाप को थोड़ा फ्रेंड्स की तरह बच्चों से ट्रीट करना चाहिए उनको, एकदम उनकी किसी बात को सिरे से नहीं नकारें, उसको समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट पड़ सकती है, अगर उनको लगेगा कि माता पिता डांटेंगे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर करेंगे। और हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़ जाए, हमसे वो बात करेंगे तो हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं।
2: लेकिन मैम अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा बच्चे के साथ मतलब बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये बातें अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
1: यही बातें तो उनको समझनी है, और आपका रेडियो तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा ये चीज टॉपिक देखा है कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है। इससे माँ बाप होता क्या है, माँ बाप अपने काम में लगे हुए हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत मन से सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक सोशल फैक्टर होता है कि माँ बाप के जो साथी लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, अरे उसको छोड़ो, वो इस तरीके से कर रहा है। तो बहुत चीजों से माँ बाप के विचार गवर्न होते हैं कि आसपास की सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे जरूरी है। बच्चे एंजाइटी टेंशन से भी डील कर रहे हैं आजकल माँ बाप, फोन और इंटरनेट के आने के बाद से बच्चे माँ बाप से थोड़ा कम बात करते हैं, माँ बाप भी कम बात करते हैं क्योंकि वो भी फोन पे सब लोग होते हैं, और रील्स फोन ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके हाथ में फोन आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया।
2: ये करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मैम अब तो वैसे बता दे कि रील्स पर हर कोई बिजी रहता है, वहीं से गलत धारणाएं मिल जाती है उनको, तो उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चा देखे, ये क्यूरियोसिटी वाली एज है, उसके शरीर में भी चेंजेस हो रहा है, उसके सोच में भी चेंज हो रहा है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव हो रहा है, वो ये कैसे जानेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और वो बस सब तरफ से जानना चाह रहा है। अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन माँ बाप से नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वो दोस्तों से मिलेगा। सब जगह से सब चीज सही नहीं पता चल सकती, क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं वो भी उसी उम्र के हैं,
2: जी जी,
1: उनको भी तो नहीं पता सही क्या है।
2: ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जरूरी हो कि बच्चे पूछे मम्मी पापा से,
1: माँ बाप भी इनिशिएशन लेना चाहिए, माँ बाप भी इनिशिएशन ले सकते हैं। जब उनको पता है कि बच्चा उस दौर में प्रवेश कर रहा है तो माँ बाप को भी धीरे से खुल के बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब तुम जिस उम्र में हो तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ जाना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर माँ बाप उनसे उनके हालचाल भी जाने कि तुमको स्कूल में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं, आप बच्चों की चीज में इंटरेस्ट लीजिए।
2: जी बिल्कुल,
1: ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ घर का काम करना या अपना प्रोफेशन का काम करना है, घर में भी आप उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि बच्चे को जीवन तो माँ बाप ने दिया है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है।
2: या राइट,
1: उन्हें
2: एग्री विद यू,
1: उन्हें उस चीज पे देखना पड़ेगा कि बच्चे के जीवन में जो कुछ हो रहा है उनसे जो बन पड़ रहा है वो बच्चों से बात करें। बात करना बहुत जरूरी है,
2: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है क्योंकि फोन हर किसी के पास है, हर कोई फोन में लगा हुआ। तो फिलहाल मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन से बदलाव सामान्य होते हैं और कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बच्चों को पता होना चाहिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे या डॉक्टर से पूछे।
1: देखिए, बदलाव शारीरिक और मानसिक इमोशनल सब तरीके के बदलाव है। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो जेन्युइन बदलाव है, वो सबके अंदर आते हैं। हालांकि हाँ, अगर वजन बहुत बढ़ रहा है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वजन अगर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर वजन बढ़ता है उससे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं
2: जी
1: उनका लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है, उनसे आगे चल के उनमें बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं में या चेहरे पे बाल आ जाते हैं।
2: जी जी,
1: महावारी अभी शुरू होती है लड़कियों की, तो शुरू में महावारी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और उसका भी एक फिक्स एज नहीं है कि महावारी इसी एज में आनी चाहिए, पहले महावारी 12-13 साल में आती थी, आजकल महावारी 9 साल में भी शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, जो चीजें उनको पता है इंटरनेट से बहुत चीजें बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है नॉर्मल ब्लीडिंग है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है और दो दो तीन तीन महीने का डिफरेंस आ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, या लग रहा है कि लड़कियों की आवाज भारी हो रही है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और संकेत क्या है जिसमें घबराने की जरूरत है या जिसमें आपने पूछा कि ध्यान रखने की जरूरत है? थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अकेले ज्यादा रहना चाह रहा है।
2: बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद अकेले महसूस करते हैं।
1: हाँ, लेकिन एक चीज आजकल देखिए, डिप्रेशन बहुत आ रही है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो सारे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते रहते थे ना। आपने देखा होगा कि पहले डिप्रेशन इतना नहीं होता था,
2: कहानियां सुनते रहते थे,
1: नानी सुनते रहते थे, नानी दादी से आपस में लड़ भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये सब तो चलता रहता है दुनिया में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ज्यादातर, माँ बाप के पास अपना टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, अपना पढ़ाई में प्रेशर है, कई तरीके की परेशानियां हैं, तो कन्वर्सेशंस खत्म हो रहे हैं।
2: जी
1: ठीक है, तो और बच्चों में प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आना है, या मेरे 99 ना होके मेरे 97 ना हो गए, इस नंबर हो गए, इसमें भी बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें ये लक्षण देखने हैं कि ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा ठीक था, अब अचानक से वो अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहा है, या इतना हमें ऊपर से ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छी कंपनी में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। और बच्चा कोई बहुत एडवेंचरस चीज तो नहीं हो गया है, एडवेंचरस काम तो नहीं करना चाह रहा है कि आज मुझे कोई रिस्की काम ना करना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो, या नॉर्मल बात में बच्चा सामान फेंक रहा है, कान बंद कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो चीजें हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि अच्छा, मानसिक आपने जैसे पूछा, मानसिक स्वास्थ्य पहले एक स्टिग्मा हुआ करता था, लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, उसको बस एक बिहेवियर करार दे दिया जाता था कि ये थोड़ा गुस्सेल है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य पे सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, एनजीओस भी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर किसी के परेशानी हो रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, आपको इसे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। जैसे शरीर में बाकी ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही शरीर में दिमाग भी है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो जैसे इंसान डायबिटीज है, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो गया, इनकी दवाइयां खाता है, तो वो दिमाग की परेशानी की भी दवाई खा सकता है। ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि इसकी दिमाग की दवाई चल रही है। तो पहले जैसे लोग डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड कर, और जरूरी नहीं है कि आप दिमाग के ही डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप जिनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ रहे, आप उनके पास जाइए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और हर चीज में दवाई की जरूरत नहीं होती है, कई चीजों में काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। कई बार माँ बाप को यही नहीं पता होता है कि बच्चे की स्थिति से हमें डील कैसे करना है।
2: जी,
1: तो अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें, अपने परिवार में बात करें, दोस्तों से बात करें, सब तरफ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है।
2: और मैम, एक कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, पूछिए।
2: जैसे कि आपने बोला भी था कि डिप्रेशन, और फिर बच्चे अकेले रहते हैं, और आज के टाइम में तो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, रूम में भी अकेले रहते हैं, जबकि वो घर पर सभी फैमिली वालों के साथ रहते हैं, और इस वजह से वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, और खासकर लड़कियों में यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उनका यही कहना होता है कि 15 दिन डिले हो जाते हैं, 20 दिन डिले हो जाते हैं, तो क्या ये अकेलेपन का भी है कुछ?
1: हाँ, अकेलेपन से आपका दिमाग परेशान है, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपका हार्मोन लेवल चेंज होगा, हार्मोन लेवल चेंज होगा तो आपकी महावारी भी चेंज होगी, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो अपना वॉक पे जाइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग फैमिली से अलग रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको रेगुलरली, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, लेकिन डेली वॉक पे जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से शारीरिक तो बहुत फायदा होता ही है, मानसिक तनाव में भी बहुत कमी आती है, मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। ये चीजें करें, गाने सुने, और लोगों से बात करें, लोग कुछ भी हो, बात करना नहीं बंद करना चाहिए, बातें करनी बहुत जरूरी है, बातें सुननी बहुत जरूरी है।
2: लेकिन मैम, आज के टाइम में इतना टाइम कहाँ किसी के पास होता है?
1: देखिए, आप जिस चीज को प्रेफरेंस देंगे उस चीज के लिए आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेंगे।
2: ये तो है।
1: अगर आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई काम करना है, जैसे अब देखिए हम लोग सीरीज देखते हैं तो इतने बिजी शेड्यूल में भी सब लोग सीरीज तो देख ही रहे ना, या कहीं घूमने जाना है, कोई आपको किसी मंदिर धाम कहीं भी जाना है, आप कैसे ना कैसे टाइम निकालते
2: चले जाते।
1: बस अपने हेल्थ को फोकस देना है, हम ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है, अगर हम ही ठीक नहीं है, तबीयत ही नहीं ठीक है तो हमको सोने की चीज भी दे दी जाए हमको क्या खुशी मिलेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक छोटा सा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें
1: किशोरों के लिए, मैसेज ये है कि आपके शरीर में और मानसिक चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल नहीं है, वो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है और जिस दौर से आप लोग गुजरे हैं उसी दौर से आपके बड़े दीदी, बड़े भैया, माता पिता, दादा दादी सब लोग गुजरे हैं। तो कुछ भी विचार आ रहे हैं तो एकदम से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अपने लिए जजमेंटल भी नहीं होना है कि ये क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ, और जो भी विचार है वो आप घर में किसी से भी क्लोज है, स्पेशली माँ से, माता पिता से और माँ से, बड़ी दीदी है, मौसी है, आप लोग सबसे बात करिए, अपने जो डाउट्स हैं आप लोग ये विश्वास रखिए कि ये लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो लोग आपको समझेंगे क्योंकि सब आपके शुभचिंतक हैं। हाँ ये हो सकता है कि वो अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, आप अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, उन लोगों के समय चीजें दूसरी थी, आप लोगों के समय में चीजें दूसरी हैं, तो आप लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए जब आप बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो आपको दूध पिलाते थे, तब भी खाना देते थे, तब भी आपको क्लीन करते थे, तो वो आपको समझेंगे। आप लोग थोड़ा भरोसा करके उनसे अपनी चीजें शेयर करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माता पिता आपको समझ के आपको सही राय देंगे, क्योंकि कोई सोच गलत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही मिलनी चाहिए।
2: तो मैम जाते जाते आप एक कुछ आपके पसंद का कोई गाना हो जो हम रेडियो पे श्रोताओं को आप डेडिकेट करना चाहें।
1: हाँ बिल्कुल, एक गाना है नारायण मिल जाएगा, जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनके द्वारा गाया गया है, और इसको प्ले कीजिएगा। और ये मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हैं तो नारायण को मान रहे हैं, दूसरे धर्म के हैं तो अपने गुरु को या अल्लाह को मान रहे हैं, सब अल्टीमेटली एक हैं। और इसका बेसिक एक जो जिस्ट मुझे इस सॉन्ग का मिला वो ये है कि आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, भगवान जो है या जो गुरु है वो सब देख रहे हैं, जैसे आप करेंगे आपको उन चीजों का अच्छा फल जरूर मिलेगा।
2: वही बात आ गई ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा।
1: बिल्कुल, और अपने पे भरोसा रखें सब।
2: करेक्ट है। थैंक यू सो मच मैम,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आई होप कि हमारे श्रोता है उनको भी बातें समझ में आ गई होंगी।
1: रेडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
2: जी,
1: क्योंकि सब लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं और इसके माध्यम से आप शहर में, गांव में, हर जगह तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज हैं आप लोगों के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad, 89.6 FM.
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है श्रोता, जुबिन नौटियाल जी की आवाज में नारायण मिल जाएंगे। इसीलिए अपने कर्म अच्छे करिए आप, कुछ नहीं पता भगवान किस रूप में मिल जाए, किस रूप में मिलकर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, बिल्कुल भी नहीं पता होता है। इसीलिए अपने कर्म अच्छे करिए, ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला, उसकी बातों पर विश्वास करें। जब तक आप अपने कानों से अपनी आंखों से ना सुने, हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और कोई आपको बता भी रहा है, कुछ गलत बातें बता भी रहा है कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला है वो बोला है, तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात है आप में भी उतना गट्स होना चाहिए कि आप उसके सामने ये बातें जाकर पूछे कि आपने मेरे बारे में ये चीज बोला है। और आप नहीं बोलेंगे और जाके सामने से लड़ेंगे तो इस तरीके रिश्ते खराब होते हैं, और फिर रिश्ते खराब होते तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब आपको कोई बता भी रहा है ना, तो पहले उससे आप क्लियर करिए, तब जाकर आप उसके बारे में कुछ भी सोचिए। ऐसे ही अपने अंदाजे से उसने बोला और विश्वास करके किसी के बारे में कुछ नहीं गलत सोचना चाहिए। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्म अच्छे रखने चाहिए, इंसानियत अपने अंदर जरूर रखिए। और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके। हमें किशोर अवस्था में हर किसी के अंदर, हर बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, लड़कों के अंदर आवाज चेंज हो जाते हैं, तो एकदम वो सोचते हैं अरे ये मेरी आवाज को हो क्या गया है। फिलहाल मेरी आवाज भी ऐसी आ रही होगी क्योंकि जुकाम जब होता है ना तो आवाज ही चेंज हो जाती है। तो हमें गलत चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके अंदर लग रहा है कि भाई बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस है, तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। घर के नुस्खे मत अपनाइए, किसी की बातें सुनी सुनाई बातों पर ट्रस्ट मत कीजिए। और मैसेज की बात करूं तो साथ ही साथ बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हमारी तरफ से आपको प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, वेरी गुड। ललिता जी कनेक्ट हो गई हैं, इवनिंग मस्ती शो में कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, हम चाय पी लेंगे। मौसम में थोड़ी नमी है जी, मौसम में थोड़ी नमी है तो एंजॉय करिए। और मैम डॉक्टर यानी कि सोनम मैम से आपने जो भी जानकारी दी है बहुत अच्छा लगा है हमें जानकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैम ये तो हमारा फर्ज है आप सभी के साथ अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचाना, ताकि गलत जानकारी हमारे पास ना हो। कहते हैं ना, थोड़ा ही जानकारी हो लेकिन सही हो वो अच्छा होता है।
1: अरे हमसे परे ले जाइए, मैं तेरी तू मेरा।
0: धन्यवाद जी। और अगले मैसेज की बात, रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि शुभ यानी कि शुभ बुधवार शाम की रीना जी, वेरी गुड। रीना मैम को प्रोग्राम का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में ही आप मेरे स्वागत कर रहे हैं, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल हम एक गाना सुनवाते हैं आपको और उसके बाद लौट कर आएंगे और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करने वाले हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। लेकिन इसी बीच ना कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद हम कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है। और आपको जानकारी कैसी लगी बिल्कुल आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। ताकि देखिए हम आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि कुछ न कुछ अच्छी जानकारी आप सभी तक पहुंचे। फिलहाल कमर्शियल एड ब्रेक।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:39 हो चुके हैं। और देखिए रक्षाबंधन का त्योहार है, और इसी बीच देखिए हम कभी कभी ना ये गलतियां कर जाते हैं कि घर बैठे सोचते हैं कि नहीं यार ऑनलाइन कर देते हैं, राखी खरीद लेते हैं, मिठाई के डब्बे भी घर ही मंगवा लेते हैं। क्योंकि देखिए भैया हर टाइम कोई अब ना क्योंकि अवेलेबल हो चुका है, डिजिटल जमाना इतना है, घर बैठे बैठे स्विगी जोमैटो ब्लिंकिट कर लेते हैं और बस हमें थोड़ा सा भी टहलने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन कब ऑनलाइन करते समय ना कुछ चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभी ऐसे लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, और वहां पर अच्छा खासा आपसे ये कहा जाता है कि ऑफर है आपके लिए, अगर आप इतने पैसे का राखी लेते हैं तो आपको इतने राखी मिल जाते हैं। तो कभी कभी लालच में आ जाते हैं कि चलो यार कम पैसे में ज्यादा राखी मिल रही है तो हम ले लेते हैं यहाँ से। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि आप पेमेंट कर देते हैं लेकिन आपके पास वो राखी नहीं पहुंचती है, तो इसका भी ध्यान रखना है जब आप ऑनलाइन कुछ भी मंगा रहे हैं। इस टाइम त्योहार के समय ज्यादातर ये धोखाधड़ी स्कैम हो जाता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि लालच में बिल्कुल भी नहीं आना है कि भैया 10 रुपए की हम राखी ले रहे हैं, हम आपको भी हम राखी 20 मिल रही है, तो ये जरा सा झूठ होता है। लिंक को पहले अच्छे से जानिए कि आप कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, क्या जब हम ऑर्डर कर रहे हैं अगर कुछ गलत चीजें आ जाती तो क्या हम रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। अदरवाइज जो आपने पेमेंट कर दिए भैया तो आप सोचेंगे दोबारा हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, कतई भी नहीं होने वाला ऐसा। सोच समझ कर जो भी कुछ आप बाहर से मंगाते वो सोच समझ कर ही मंगाना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ मैसेज है विक्की सागर जी का, गुड इवनिंग का मैसेज आता है, वेरी गुड इवनिंग सर, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी टेम्परेचर है यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस मुरादाबाद का टेम्परेचर है, और यूं ही आप सभी आर्जोरीना के साथ कनेक्ट रहिए। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ रूपाली जी मुरादाबाद से कनेक्ट हो गई है, गुड इवनिंग पहुंचाती है, वेरी गुड इवनिंग जी। रणवीर जी जेठालाल जी कनेक्ट हुए हैं मुरादाबाद से, इनके कहने हैं कि रीना मैडम आपने जो जानकारी अपने प्रोग्राम में सुनवाई अच्छी लगी हमें, मैडम जी आज आपने सवाल नहीं पूछा है, मैडम जी आप भी बड़ी भोली है, हाय सो स्वीट। इन्होंने बोला है मैडम आप भी बड़ी भोली है, मैं भूलती नहीं हूं, पर सर सवाल आपसे पूछूंगी, जस्ट अभी ही पूछूंगी, आप थोड़ा इंतजार करिए, बस जो मैसेज है उनको मैं शामिल कर लूं एक बार। पूनम जी दिल्ली से कनेक्ट होती हैं और इनके कहने कि हम आपके रेडियो सुनते हैं, हालांकि हमारे दिल्ली में भी बहुत रेडियो है, जब भी जगह आप गाड़ी लेकर चले जाओ तो रेडियो रेडियो सुनते चले जाओगे, लेकिन पता नहीं मुझे मुरादाबाद का जो रेडियो है सुनना क्यों अच्छा लगता है, मतलब मैं खुद भी बयान नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है मुरादाबाद का रेडियो सुनना। आप सभी जो दिल्ली के जितने भी रेडियो सुनते हो ना, मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट मुरादाबाद का रेडियो लगता है। हाय मैम थैंक यू। विनीता जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से, गुड इवनिंग पहुंचाती, वेरी गुड इवनिंग जी। और इनका कहना है कि जो अभी आपने किशोरावस्था के बारे में बात करी है ये जानकारियां मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मेरी बेटी हैं वो भी 13 साल की हैं और वो भी टीनेज में आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स तक ये जानकारियां पहुंचना बहुत जरूरी है। और रीना मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल हम कड़क म्यूजिक आप सभी के बीच प्ले करते हैं, ठीक है, आपने सुनना है और हमें ये बताना है कि जो मैं म्यूजिक प्ले करूंगी सिर्फ और सिर्फ गाने का नाम बताना आपने, बस इनफ, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है।

जी मैं कितने ध्यान है आपका जी, जल्दी जल्दी मैसेज करके बताओ कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले कर रही हूँ आप सभी के बीच, गाने का आपने नाम बताना है कि म्यूजिक के गाने का क्या नाम है। आखिरकार हम देखिए मूवी का नाम नहीं पूछ रहे आपसे, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें मूवी का नाम भी बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपने गाने का नाम ही बताना, इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने। और ये गाना आई थिंक आपने मॉर्निंग मसाला शो सुना होगा, तभी भी मैंने ये गाना प्ले किया था, और अभी भी मैं यही म्यूजिक आपसे पूछ रही हूँ, बस म्यूजिक सुनाऊंगी और गाना आपने खुद बताना है मैसेज करके कि गाने का क्या नाम है।

0: चलिए जितना ही इनफ है सोचिए और मैसेज करिए. फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया.
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद.
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई. जिग करो, स्वच्छता की जिद करो.

जी गुड वाली इवनिंग है, और समय की बात करूं तो 6:51 हो चुके हैं। और देखिए, साथ ही साथ रक्षाबंधन के मौके पर यानी कि 27 तारीख से लेकर यानी कि 29 तारीख तक बस की सेवाएं हैं वो फ्री हैं बहनों के लिए। लेकिन ये बात आपने याद रखना है कि एसी वाले बस में अगर आप जाते हैं तो भैया टिकट तो आपने कचाना पड़ेगा, अगर उसमें मुफ्त यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सरकारी बसों में ही आप मुफ्त यात्रा कर पाएंगे, इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना। और साथ ही साथ जो 60 जिनकी जिन माताओं की 60 साल की हो चुकी हैं, उनकी ये 60 साल हो चुकी हैं, उनके लिए भैया ऑल टाइम बस की जो सुविधाएं हैं वो फ्री में मिलेंगी, यानी कि फ्री में आप यात्रा कर पाएंगे, वो भी सरकारी बस में। अभी सरकारी बस में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे, इस चीज का भी आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। और जो 60 साल की हो चुकी है सिर्फ उनके लिए है, और बाकी 2 दिन तो सभी के लिए है, अपने घर भाई के घर राखी बांधने जाएंगे उनके लिए है। और साथ ही साथ आज का कड़क म्यूजिक एक बार और हम प्ले करते हैं, और इसके बाद आप सभी के मैसेज शामिल करने ही आ जाएंगे। तो चलिए म्यूजिक प्ले करते हैं, और आपने सोचना है कि जो अभी म्यूजिक प्ले किया है उसका नाम बताना है अपने बस गाने का।

चलिए जी, आई होप कि आपने सुन लिया होगा। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था, अब तो आप बता सकते हैं कि आखिरकार गाने का क्या नाम है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनाते हैं और उसके बाद मैं कनेक्ट हो जाऊंगी आप सभी के साथ, मैसेज आप सभी के शामिल करना।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 6:56 हो चुके हैं और अब बारी है आप सभी के प्यारे प्यारे जो मैसेज आए हैं ना, वो अब हम शामिल करेंगे कि भैया किनका हमारे पास क्या मैसेज आता है। तो चलिए देखते हैं कि किन्होंने सबसे पहले हमारे पास राइट आंसर पहुंचाया है, यानी कि राइट आंसर के साथ सबसे पहले कनेक्ट हुए थे। आज का हमारा प्यारा म्यूजिक है, चलिए एक बार मैं सुनवा देती हूँ।

महबूब मेरे संदीप कश्यप जी कनेक्ट हो गए हैं और इनका कहना है कि भैया इन दोनों में आज कंपटीशन था, इनकी जो धर्म पत्नी है ललिता कश्यप जी, लेकिन विनर तो हुए हैं संदीप कश्यप जी क्योंकि इन्होंने राइट आंसर पहुंचाया है। ठीक है जी, और सबसे पहले राइट आंसर पहुंचाया है, तो ललिता मैम आज सर जीत गए, आप हार गई हैं लेकिन इन्होंने भी राइट आंसर दिए हैं मेरे महबूब।

एक सर हमें फोटो भेज रहे हैं बाबू ठाकुर जी की, 27 से लेकर यानी कि 29 अगस्त तक सभी बहनों के लिए बस यात्राएं यानी कि फ्री है। बिल्कुल जी, हमने वो बता दिया है। थैंक यू सो मच, आपने ये पोस्टर हमारे तक शेयर की। बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि मैम थोड़ा आप आसान सवाल पूछा कीजिए। आसान, ठीक है जी, कल से ना हम याद रखेंगे कि आसान क्वेश्चन हमें पूछना है और बाद में आंसर बताती है महबूब सनम। ओके, रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। अच्छा, ललिता जी का कहना है कि मेरा सुनकर आंसर भेजा है इन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास जो मैसेज सबसे पहले आया है वो तो संदीप जी का आया है, तो ये विनर होते हैं। रीना मैम कैसी हो आप? बहुत अच्छी हैं जी। नेहा जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से और इनके कहने कि हमारे लिए गाना प्ले कर दीजिए, लेकिन गाना तो हम तभी प्ले करेंगे ना जब आप राइट आंसर हमारे तक पहुंचाएंगे तब। संजू जी कनेक्ट होती है राइट आंसर के साथ और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। मिलेंगे दुआओं में जी, करेंगे ढेर सारी बातें।

हमें चलते फिरते सूचना मिली है कि आज अखिल भैया शो में यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कनेक्ट होने वाले हैं, सिर्फ आज आज, क्योंकि उन्हें कहीं जाना होगा ना 9 बजे मूवी देखने। तो

0: इसीलिए वो पहले कनेक्ट पहले कह रहे भैया मैं पहली मोर्चा मार लेता हूँ, यानी कि पहले कनेक्ट हो जाता है फिर मैं छुट्टी ले लूंगा आराम से। मतलब ये बड़े सियाने हैं जी, हम अपने टाइम पर शो करें ये टाइम बढ़ा देते हैं। गलत बात है जी, बहुत से शिकायत करनी पड़ेगी इनकी मुझे। तो आज ये आप सभी के साथ 8 बजे ही कनेक्ट होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं श्रोताओं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत, मिलेंगे आपको दुआओं में। जब भी मेरी आवाज आए रेडियो पर समझ जाइएगा रीना मैडम आ गई है। अभी के लिए बाय, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी अपने जिंदगी में यूं ही एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए और अपने जिंदगी में खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ही हमें खुशियां मिलती हैं।
1: नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779107500 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है, साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हेलो, दिस साइड आरजे रीना फ्रॉम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी मैम, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है जननांग में कुछ वार्ड्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है। अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए, तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों में भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकता है। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए। जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में है, स्कूल वाले में है, उनकी शादियां नहीं हुई है, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
0: मैम, क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं, जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है। जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं, अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
0: अच्छा, 2 डोज,
1: हाँ। और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 8 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम, बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। देखिए, देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स

0: होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। फिर बहुत सारे चार पांच स्टेजेस, फेज 1-2, बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट, आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
1: जी, बिल्कुल।
0: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ, कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता, जानकारी का माध्यम नहीं है। तो अपने करीबी, आप गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें, अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहां नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
1: मैम, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
1: ओके,
0: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
1: ओके, मुझे भी आज पता चला है।
0: अच्छा, तो ये बच्चे, ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है, ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
1: मैम, गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले ही पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवा, कभी ऐसा ना हो कि आगे चल कर कोई प्रॉब्लम हो जाए।
0: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाए, उन लोगों से पूछे, जब वो लोग घर में आते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन ले। अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें को, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
1: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, बाद में देखने,
0: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहे।
1: मैम, एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें,
0: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है, और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के
1: जी जी बिल्कुल
0: बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है
1: जी।
0: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ENM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
1: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, तो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
0: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
1: तो चलिए श्रोताओं,
0: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
1: अच्छा लगा,
0: थैंक यू रीना जी।
1: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
0: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
1: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है। बाय मैम,
0: बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: विकास की नई सोच, परंपरा का नया सम्मान, स्वाद, संस्कृति और रोजगार को नई उड़ान देता है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम का नाम तो बता ही दिया है, और आज इस प्रोग्राम को मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूँ। पहले अपना नाम बता देता हूँ, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आनंद, और आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में अपना साथ देने के लिए आ गई है कौन? मेरी प्यारी दोस्त
1: आरजे रीना।
0: यस आरजे रीना, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
0: मैं बहुत ही अच्छा हूँ।
1: दोस्तों, उत्तर प्रदेश यानी विविधताओं का प्रदेश, यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदलती है, पहनावा बदलता है, और सबसे मजेदार बात, स्वाद बदल जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आरजे रीना आपने। अगर हम आगरा जाएं तो वहाँ का पीठा याद आता है, अगर हम वाराणसी जाएं तो वहाँ की कचौड़ी, जलेबी की खुशबू मन मोह लेती है, मथुरा के पेड़े, कानपुर के ठगू के लड्डू और मेरठ की रबड़ी, अयोध्या की मिठाइयाँ, आय हाय हाय, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने स्वाद में एक कहानी समेटे हुए है।
1: और अब यही स्वाद, यही परंपरा उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनने जा रही है, क्योंकि योगी सरकार लेकर आई है एक बेहद खास पहल, एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
0: दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ व्यंजनों को पहचान देना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित करना, आधुनिक बनाना, रोजगार से जोड़ना और दुनिया तक पहुंचाना है।
1: यानी अब हमारे गांव कस्बों की रसोई से निकलने वाले पारंपरिक व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।
0: अरे वाह, यह सोचकर तो बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन जरा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए, आखिर यह योजना कैसे काम करेगी?
1: जरूर, देखिए दोस्तों, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश के हर जिले के एक खास पारंपरिक व्यंजन की पहचान की जाएगी, फिर उस व्यंजन को गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग के आधुनिक मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
0: यानी जो स्वाद वर्षों से लोगों के दिलों में बसा है, उसे अब एक नई तकनीकी और बेहतर प्रस्तुति के साथ दुनिया के सामने लाया जाएगा।
1: बिल्कुल, और इसके लिए सरकार ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग भी लिया है,
0: जैसे कि FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण।
1: जी हाँ, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा CFTRI यानी कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और NIFTEM जैसे बड़े संस्थान भी इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।
0: तो ये संस्थान क्या करेंगे?
1: ये संस्थान हर जिले के व्यंजन के लिए स्टैंडर्ड रेसिपी मैनुअल तैयार करेंगे, यानी उस व्यंजन को बनाने की एक मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि उसका स्वाद, गुणवत्ता और स्वच्छता हर जगह एक जैसी बनी रहे।
0: मतलब अगर कोई पर्यटक मथुरा के पेड़े खाए या वही पेड़े विदेश में पैक होकर पहुंचाए, तो उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता एक समान हो।
1: बिल्कुल सही समझा आपने, और इससे सबसे

0: बड़ा फायदा होगा विश्वास का निर्माण।
1: दोस्तों, आज के समय में लोग सिर्फ स्वाद नहीं देखते, वो यह भी जानना चाहते हैं कि खाना कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और उसकी गुणवत्ता कैसी है।
0: और इसी वजह से इस योजना में न्यूट्रिशन लेबलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: यानी अब पैक किए गए पारंपरिक व्यंजनों पर पोषण संबंधित जानकारी भी दी जाएगी श्रोताओं।
0: साथ ही QR कोड और बार कोड जैसी सुविधाएं भी होगी, ताकि ग्राहक आसानी से उत्पाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
1: वाह, यानी पारंपरिक स्वाद लेकिन आधुनिक अंदाज।
0: दोस्तों, योजना का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मार्ट पैकेजिंग,
1: क्योंकि अच्छी पैकेजिंग ही किसी उत्पाद की पहली पहचान होती है। दोस्तों,
0: बिल्कुल, सरकार भारतीय पैकेजिंग संस्थान यानी IIP के सहयोग से आकर्षक, सुरक्षित और इको फ्रेंडली पैकेजिंग विकसित करेगी।
1: मतलब अब हमारे पारंपरिक व्यंजन सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि देखने में भी शानदार होंगे,
0: और इससे उन्हें बड़े मॉल, सुपरमार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जगह मिल पाएगी।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा स्थानीय व्यंजन जो कभी सिर्फ गांव या शहर तक सीमित था, अब दुनिया भर के लोगों की पसंद बन सकता है।
0: और यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह सिर्फ भोजन की बात नहीं करती, यह रोजगार और आत्मनिर्भरता की भी बात करती है।
1: सही कहा आपने आरजी रीना, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमी युवाओं और स्वयं सहायता समूह को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा
0: और उन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे बेहतर पैकेजिंग करे, कैसे उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखे और कैसे ब्रांडिंग करे और कैसे अपने उत्पाद को बड़े बाजार तक पहुँचाए।
1: यानी कि गांव की महिलाएं, छोटे व्यापारी और युवा अब अपने हुनर को रोजगार में बदल सकेंगे।
0: बिल्कुल, कल्पना कीजिए, किसी गांव की महिलाएं अगर अपने पारंपरिक अचार, मिठाई या स्नैक्स को सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ बेचे तो वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
1: और यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश की असली सोच, जहां विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाद भी, सम्मान भी, रोजगार भी, पहचान भी, एक जनपद एक व्यंजन, उत्तर प्रदेश की नई उड़ान।
0: दोस्तों, सरकार इस योजना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड बनाने की दिशा में काम कर रही है।
1: बड़े आयोजन में स्वाद यूपी का थीम के तहत बड़े आयोजनों में इन व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
0: साथ ही डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया अभियान और लघु फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाया जाएगा
1: और इसके फायदे पर्यटक को भी मिलेंगे।
0: बिल्कुल, जब कोई पर्यटक किसी जगह जाता है तो वह वहाँ का स्वाद जरूर याद रखता है। इस योजना से उत्तर प्रदेश का फूड टूरिज्म भी मजबूत होगा।
1: यानी लोग सिर्फ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को देखने नहीं आएंगे बल्कि यहाँ का स्वाद का अनुभव लेने भी आएंगे।
0: और जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
1: तो दोस्तों, अगर आपके जिले में भी कोई खास पारंपरिक व्यंजन है तो ये समय है उनको एक नई पहचान देने का।
0: संस्थाई उत्पाद अपनाएं, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित कीजिए और उत्तर प्रदेश के स्वाद को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाइए,
1: क्योंकि जब हमारे स्थानीय स्वाद दुनिया तक पहुंचेंगे तभी सकपाइनों में उत्तर प्रदेश बनेगा विकास का प्रदेश।
0: इसी उम्मीद और सकारात्मक संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति।
1: तो मैं हूँ आरजे आनंद
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना।
1: फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के अगले विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई सुबह।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें से 2500 स्वीकृति पत्र एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उन्हें उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मासिक सहायता महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा, रोजमर्रा के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।
4: वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है। पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रूपये डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे, जबकि 1500 रूपये की राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा की जाएगी। इस पर मिलने वाले ब्याज का वहन सरकार करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए करीब 9,13,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 6,52,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं।
5: दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
4: दिल्ली सरकार ने कहा है कि महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना को मिली प्रतिक्रिया दिल्ली की महिलाओं के इस पहल में विश्वास को दर्शाती है और राजधानी में अवसर तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
3: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लक्ष्मी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
6: लक्ष्मी योजना के जरिए 2500 रूपए की राशि सभी महिलाओं को दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और इस ये वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण का, उसकी ओर एक बड़ा कदम है दिल्ली सरकार का।
3: दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
7: दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। दिल्ली चिकित्सा संघ के अनुसार दिल्ली सरकार ने इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं ताकि H1N1 के किसी मरीज के आने पर उसे आपात स्थिति में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
8: आइसोलेशन बेड बनाया गया है, उसे आइसोलेशन बेड को इस रखा है कि कोई H1N1 का पेशेंट आए तो उसके लिए एक इमरजेंसी के रूप में उसकी हर चीज सुविधा रहे, फ्लूइड्स रहे, ऑक्सीजन रहे, मेडिसिन रहे अवेलेबल, डॉक्टर्स उसमें रहे। अगर पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखते हैं कि हाई ग्रेड फीवर के साथ आया और उस एक्सरे में कुछ पैच वर्क दिखा तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए हमने आइसोलेशन फॉर द इमरजेंसी रखा गया।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने जल जमाव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस स्थिति को एक आपदा माना जाए और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभागों और एजेंसियों को अलग अलग काम करने के बजाय पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से मौजूद रहने और मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का तुरंत समाधान करने को कहा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि इस बार बारिश उम्मीद से कुछ अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि परिषद लंबे समय की योजना के तहत जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर तेजी से काम कर रही है। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने बताया कि परिषद ने नालियों से गाद हटाने के साथ साथ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया है।
9: हमारे यहाँ कुछ ड्रेनेज ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल से की भी है, जो ब्रिक बैरल्स हैं, उस बाकी सब चीजें जिनको हमने काफी कुछ ठीक भी किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम NDMC की जनता को 100% वाटर लॉगिंग फ्री एरिया दें, तो उसको लेके हम हमेशा तत्पर रहते हैं।
3: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एम्स ने जानकारी दी कि इसके लिए इनवेसिव बायोप्सी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मोटापे और फैटी लीवर वाले 189 मरीजों पर किए गए एक शोध में लीवर की शक्ति, एक खास ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट से लीवर की सेहत का पता चला। एम्स ने बताया कि शुरुआती पहचान और आसान डायग्नोसिस से लीवर की बेहतर सेहत में मदद मिल सकती है। दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उपायुक्त को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संबंध में कांग्रेस पार्टी और अन्य के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही एक झूठी तथा भ्रामक पोस्ट को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा। सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि यह दुखद है कि राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला करने में अक्षम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे अन्य दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भाजपा और उसके नेताओं पर आक्षेप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले पर उसका कुप्रचार कभी सफल नहीं हो सका। नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत पश्चिम और सेंट्रल नॉर्थ जोन की पशु चिकित्सा सेवा टीमों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से विभिन्न इलाकों में आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान पीतमपुरा, हर्ष विहार, रानीबाग, ओम विहार और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 16 आवारा मवेशियों को पकड़कर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। निगम ने कहा कि सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी से होने वाली घटनाओं और यातायात संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर, एआईईईए पीजी और

0: तस्कर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। 5 अलग अलग मामलों में 2 महिला शराब तस्करों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह फर्जी QR कोड के माध्यम से विक्रेताओं के साथ पैसों के लेनदेन में हेराफेरी करते थे। मीडिया से बातचीत में उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि अब तक इससे जुड़े 8 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फर्जी अकाउंट्स को भी बंद किया गया है।
1: इस अभियुक्त का नाम निखिल है, जो 22 साल का है और सब्जी मंडी का रहने वाला है, और इसके 8 केसेस सामने आए हैं अभी तक। इसके 8 केसेस में 2 केसेस बॉम्बे के हैं, मुंबई के हैं, और 6 केसेस दिल्ली के हैं। ये जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको बाउंड डाउन किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओणम के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि समृद्धि और एकजुटता का यह त्यौहार हर घर में शांति, खुशहाली और खुशियां लाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज से देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन ईमानदारी, विश्वसनीयता, करुणा, धैर्य और क्षमा का शाश्वत संदेश देता है। उन्होंने बाड़ा हिंदू राव में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इस कार्यक्रम में बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉ इमरान उमर अहमद इलियासी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यह निशुल्क यात्रा सुविधा कल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावित रहेगी। इन महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले 15 वर्ष तक के बच्चे भी बसों में बिना किराए दिए यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा दिल्ली और चंडीगढ़ सहित किसी भी स्थान की यात्रा के लिए मान्य होगी। उत्तर रेलवे के लिए 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ी एशियन खेल 2026 में भारतीय टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन कबड्डी, हॉकी और मुक्केबाजी के लिए किया गया है। उत्तर रेलवे में खेलों के इस निरंतर प्रगति के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के पदाधिकारियों का सहयोग है। राजधानी दिल्ली में आज भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: नमस्कार मुरादाबाद, टाइम हो रहा है 8:06 और इस रखा अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग। कहते हैं ना कि साहब जैसी दिल से याद करो सामने वाला दिल से हाजिर हो जाता है। तो हाँ, मैं हूँ आपका अखिल और आपके साधन दिल से दिल तक अखिल संग में। आज का जो सफर है ना आपका, वो खूब मस्त वाला होना चाहिए, क्योंकि जब भी ऑफिस से निकले हैं अच्छा अच्छी फीलिंग्स लेके। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा चलता है साहब, मगर ये गुस्सा रेड लाइट पे नहीं निकलना है, क्योंकि होता क्या, अगर रेड लाइट पर अगर आप 60 सेकंड के लिए भी रुक गए ना, तो बस अंदर से आवाज़ आती है भैया अब तो फटाफट हो जाए ग्रीन, मैं एकदम माइकल शुमाकर की तरह निकल जाऊँ। और आगे वाली जो गाड़ी होती है अगर वो 2 सेकंड भी लेट चले तो हॉर्न बजा बजा के उसे याद दिलाना पड़ता, भाई साहब पीछे जो है ना तुम्हारा माइकल शुमाकर है, तुम पीछे फटाफट आगे कर लो ना, पीछे फूक जाना है। और कभी क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आगे जो स्कूटर चल रहा हो वो देता है लेफ्ट का इंडिकेटर और मोड़ लेता है राइट में, तो कसम से मन करता है कि भैया उतर के पहले से स्कूटर वाले को पकड़ूं और उससे कहूं भाई तेरा क्या राइट वाले का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था क्या इंडिकेटर का, जो तूने लेफ्ट का देके राइट में मोड़ ली गाड़ी। होता है साहब, लाइफ में भी ना रेड लाइट आती है, कभी रुकना पड़ता है और येल्लो में यह सोचना पड़ता है कि क्या होने वाला है आगे। जैसी ग्रीन मिले भाई साहब एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज के शो में होंगी खूब मस्ती और खूब आपकी फरमाइश। हम 8 से 9 आज आपकी प्ले करेंगे फरमाइश के गाने। हमारे पास नरेंद्र जी का कॉल आया था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से उनकी बातें हमसे पूरी नहीं हो पाई थी। हमारे पास एक और लिसनर है जो जुड़े हैं अभी, चलिए बात करते हैं उनसे। हेलो सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप सुनाइए।
0: इस समय आप?
1: अरे इस समय क्या कर रहा है, इस समय आपका प्रोग्राम सुन रहा है सर।
0: हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। मौसम कैसा है?
1: मौसम बढ़िया सर, हम भी कुछ मौसम के बारे में आपसे कहना चाहते हैं।
0: जरूर जरूर, बोलिए बोलिए सर।
1: सर मेरा हिसाब ये है कि आपके जो भी जो आदमी है जब वो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं सुबह को मॉर्निंग में या दोपहर को भी, क्योंकि जब पानी पड़ता है ना तो कृपया इतना जरूर कह दें
0: नहीं नहीं ये तो हमारे सारे आरजेज और जो कितने भी हमारे लिसनर्स हैं, हमारे इतने सब एक्टिव हैं कि वो समझ जाते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो गाड़ी आराम से ही चलाते हैं साहब, क्योंकि पानी की छींटे जब दूसरे को भी भिगो देती है ना तो उसे भी थोड़ा सा लगता है।
1: नहीं सर, कुछ लोग हैं आज भी ऐसे।
0: तो सर वो कुछ लोग धीरे धीरे ही बदलेंगे, एकदम से नहीं बदल सकते। वो अगर आपके पास से जा रहे होंगे ना तो आपको भिगो के ही जाएंगे सर। तो आप बताइए, और कोई शायरी सुनाना चाहेंगे अभी जेठालाल जी?
1: सुना देंगे सर।
0: सुनाइए सर, सुनाइए।
1: कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए, कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए, एक हम थे अक्स बहाने में रह गए।
0: क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया शेर सुनाया है सर, बहुत ही अच्छा लगा। और कौन सी फरमाइश है जो आप सुनना चाहेंगे इस समय?
1: वो आसमान वाले जमी पे उतर के देख,
0: क्या बात है। जरूर जरूर, ये आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। और बहुत अच्छा लगा जेठालाल जी, आपने हमें कॉल करी। और
1: सर आज आप कैसे जल्दी आ गए?
0: कभी कभी सर जल्दी आना पड़ता है, जल्दी जाने के लिए जल्दी आना पड़ता है। जरूर जरूर सर, रोज मुलाकात होगी आपकी, सोमवार से शुक्रवार तक रोज मुलाकात होगी। अगर ज्यादा डिमांड रही तो हम 8 बजे से भी मुलाकात चालू कर देंगे बहुत जल्दी।
1: भाई बात, क्या बात है, क्या बात है।
0: चलिए सर,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जेठालाल जी। तो जेठालाल जी की फरमाइश है, ओ आसमान वाले जमीन पर तू उतर कर देख। तो जरूर जमीन पर उतर कर देखते हैं, ये सुनते हैं। और आपकी भी कोई फरमाइश है तो सिंपल सा नंबर है 9837896896। किसी को कुछ डेडिकेट करना है या फिर कुछ बात कहनी है तो जरूर हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9837896896 पर। तो चलिए तब तक ये फरमाइश पूरी करते हैं जेठालाल जी की।

अभी आप सुन रहे थे ओ आसमान वाले जमीन पे तो उतर के देख, जेठालाल जी की फरमाइश पे। अब सुनते हैं नरेंद्र जी की फरमाइश पे, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। तो ये रक्षाबंधन आ रहा है और नरेंद्र जी ने अपनी बहनों को ये गाना डेडिकेट किया है। तो चलिए इस गाने का लेते हैं आनंद।

क्या बात है सर, रक्षाबंधन पे जब त्यौहार, इस त्यौहार पे हमारी यूपी सरकार ने, यूपी परिवहन निगम ने रोडवेज की बस सेवा कल से, और कल सुबह 6 बजे से लेके और परसों में मध्य रात्रि तक फ्री सारी महिलाओं के लिए रक्षाबंधन त्यौहार, जो भी बहन अपने भाई के पास जा रही है, जो भी

0: भी किराया नहीं देना है।
1: और साथ के साथ रक्षाबंधन पर चल रही दो स्पेशल ट्रेन चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ और दिल्ली वाराणसी दिल्ली, दोनों का ही स्टेशन मुरादाबाद पड़ेगा बीच में। और ये चंडीगढ़ से जो चलने वाली ट्रेन है वो तड़के 3:30 बजे के लगभग मुरादाबाद पहुंचेगी और 3:45 तक रवाना भी हो जाएगी। और वाराणसी से लखनऊ के रास्ते चलने वाली जो ट्रेन होगी ये शाम को 7:30 बजे करीब मुरादाबाद पहुंचेगी और 7:40 तक छोड़ेगी। तो इस सेवाओं का आनंद लें। और कहते हैं ना, रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत

हाँ, तो फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और कहते हैं ना, जब भी साहब भागना होता है ना, तेजी से भाग रहे होते हैं, तो लगता है कि सारी ट्रैफिक लाइट्स आपको ग्रीन ही मिल जाए। एक और बात कि कभी कभी जब कहते हैं ना पेशेंस, भाई साहब किसके पास होता है, तो पेशेंस हमेशा उसी के पास है जो घर से लेट निकला हो। और ट्रैफिक लाइट जब उसे पता है ना कि भाई अब ट्रैफिक लाइट है और मैं लेट भी निकला हूँ घर से, तो सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने वाला बंदा वही होता है जो गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट पे इतना अपना पेशेंस को कंट्रोल करता है कि भाई गलती तो मेरी है, अब चाहे आगे रेड कितनी भी देर रही है। कभी जैसे कहते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस और गर्लफ्रेंड में क्या सिमिलैरिटी है, तो दोनों को लगता है कि गलती हमेशा आपकी है साहब, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सिमिलैरिटी तो है ना। चलिए साहब, तब तक आप लोग भी करें इस मौसम का एंजॉय और हमें कॉल करें 9837896896 पे, मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं। तब तक लेते छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फिर आएंगे आपसे

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। और दोस्तों ट्रैफिक जो है ना सिर्फ रोड पर नहीं होता, कभी कभी ट्रैफिक हमारे दिमाग में भी होता है। रोड पर ट्रैफिक हो तो हम इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में जब काम पेंडिंग हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो, प्लान फेल हो जाए, या कहते ना कुछ सही होते होते गलत हो जाए, तब हम क्या करते हैं, पैनिक होते हैं ना साहब। तो दोस्तों ट्रैफिक का सिंपल सा रूल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। एक वक्त एक लेन में, हर चीज़ एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। करियर का प्रेशर है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। बिजनेस की टेंशन है तो भी स्टेप बाय स्टेप चलिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, पहले आराम से कामली बात कीजिए। और लाइफ में रेड लाइट आई ना तो रुकना फेलियर नहीं है, कभी कभी रेड लाइट आपको एक्सीडेंट से भी बचाने के लिए होती है। इस तरह लाइफ का डिले भी कभी कभी आपको रॉन्ग डिसीजन से बचाता है। तो याद रखें, स्पीड इम्पॉर्टेंट है लेकिन डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो करिए आप शॉपिंग खूब मस्ती से, क्योंकि साहब दो दिन बाद, एक दिन बाद ही दूसरे दिन आप होंगे पतंगबाजी के शिकार। खूब सारी पतंगे उड़े होंगी छत पे। हाँ हाँ, मुझे ही पता है आपको भी पतंग उड़ाने का शौक है, लाल नीली काली पीली। तो सब मस्ती तो तभी आती है जब एक पकड़ता है चरखी और दूसरा कहता है ओए काटे लपेट ले फटाफट पकड़ ले। तो मज़ा तो पतंग उड़ाने का कुछ और ही है। चलिए आप भी कॉल कीजिए 9837896896 पे। कोई भी इंसिडेंट हो पतंग वाला तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम भी करेंगे सभी के साथ उसे शेयर। तब तक सुनते हैं प्यारा सा गाना, और ये गाना सच में बहुत खूबसूरत है, आप खुद इसे गुनगुनाएंगे।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी आप सुन रहे थे गाना जब तक है जान मूवी से चल्ला रे रब्ता फिरे। ये गाना गाया है रब्बी शेरगिल ने, और रब्बी शेरगिल जी की आवाज की तो बात ही कुछ अलग है। चलिए अब करते हैं कुछ थोड़ी बात अपने लिसनर्स और उनके मैसेजेस की। तो हमारे पास अभी जो मैसेज आया है वो आया है हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, ये रेशम का धागा नहीं बहन का प्यार है, यही तो खट्टे मीठे रिश्तों की तकरार है। भाई की कलाई की शोभा जिससे होती है वह और कुछ नहीं, रक्षाबंधन का त्यौहार है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस त्यौहार की, रक्षाबंधन की। खूब हंसी कहते हैं ना, मौज मस्ती से आप इस त्यौहार का आनंद लें, खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब पतंगे भी उड़ाएं साहब। नमन यादव, शंकर लाल यादव जी, ऋतु यादव, अमित यादव, निरांशी यादव, लाइन पर मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से, जिसका नाम अब बदल गया है वो आप सबको पता है, दीन दयाल जी चौराहा। तो हर हर महादेव। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्ले बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा। ये गाना अभी हमने पहले ही प्ले किया, मगर ज़रूर एक गाना भाई बहन और आपकी तरफ से भी डेडिकेट करेंगे आपकी सिस्टर्स और ब्रदर्स के लिए, एक बढ़िया सा रक्षाबंधन का गाना। और कहते हैं ना, उससे पहले आप पे एक और मैसेज आया है आज, ट्रैफिक से रिलेटेड बातें चल रही हैं। अंकित जी का मैसेज आया है कि अखिल भाई, ट्रैफिक में मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अननेसेसरी हॉर्न से होता है। क्या बात कही अंकित जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हॉर्न का मतलब होना चाहिए प्लीज़ अटेंशन, ना कि मैं आ गया हूँ, दुनिया इस जगह को खाली करो। हॉर्न जब बजाते हैं थोड़ा सा तो अनोइंग होता है, कोशिश करें कम से कम हॉर्न बजे। हमारे दूसरे लिसनर हैं मोहित जी, वो कहते हैं अखिल जी, मेरा मोटिवेशन ट्रैफिक में ख़त्म हो जाता है। भाई मोटिवेशन जो है ना ट्रैफिक में ख़त्म नहीं होता है, बस कभी कभी बैटरी लो हो जाती है। और इसलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं कहता हूँ आप, मतलब मैं तो अपने पे अप्लाई करता हूँ, कि ट्रैफिक में ना फेवरेट प्लेलिस्ट या साथ में कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स बिल्कुल अपने पास रखें, पेशेंस रखें बिल्कुल एकदम फुल टैंक का। तो जब ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती ना गाड़ी में, तो आराम से आप चाहे कितना भी ट्रैफिक हो बड़े हंसते खेलते निकाल लेंगे। तो चलिए ये गाना अब हम जो प्ले करने वाले हैं यादव परिवार की तरफ से इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे, सुनते हैं और आनंद लेते हैं। आपको अभी कोई मैसेज हो तो हमें ज़रूर आप 9837896896 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं।

एक बार फिर से स्वागत है साहब आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। दोस्तों आज ट्रैफिक की बात करते करते लाइफ की बात हो गई है, और एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ किसी और की रेस नहीं है। किसी की कार आपसे एक्सपेंसिव है, किसी का बिजनेस आपसे बड़ा है, किसी की सैलरी आपसे ज़्यादा है, या किसी का सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं। आप अपनी लेन में हैं, आपकी जर्नी अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, आपकी डेस्टिनेशन भी अलग है। बस एक चीज़ मत कीजिएगा, अपनी जर्नी को कंपेयर करके खराब मत करिएगा। ट्रैफिक में भी हर गाड़ी अपनी लेन में ही चलती है, लाइफ में भी। एक शायरी इसी के ऊपर है, रास्ते चाहे धीरे धीरे खुलेंगे, रास्ते चाहे धीरे धीरे खुलेंगे, सपने चाहे थोड़ा वक्त लेंगे, बस हौसला मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि मंजिल वही है, कभी कभी सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। चलिए आपसे भी हम इस गाने के बाद अलविदा करते हैं, और कल फिर हम आपको ठीक 9 से 10 ही मिलेंगे साहब। इसी शो में आपके साथ खूब सारी बातें करेंगे। एक हमारे लिसनर की कॉल है, उनसे बात करते करते चलते हैं, क्या कहते हैं सुनते हैं उनकी। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? इन्होंने तो हमें ही होल्ड पे रख दिया है। कोई बात नहीं साहब, इन्हें दो बार कभी कभी बटन दब जाते हैं किसी भी इंसान से, तो इनकी भी कोई गलती नहीं है। चलिए तब तक जब तक ये करते हैं, मैं दोबारा कॉल सुनाते हैं आपको, बढ़िया सा

0: तो दोस्तों खूब सारी मस्ती हुई है, खूब सारी बातें हुई हैं आज दिल से दिल तक हमारी। खूब सारी कहते हैं ना, पुरानी पुरानी बात, कुछ याद रक्षाबंधन वाली सब आपको याद आएगी। और कहते हैं हॉर्न कम पेशेंस ज़्यादा, स्पीड कम सेफ्टी ज़्यादा, टेंशन कम स्माइल ज़्यादा। तो हम अपने लेते हैं लास्ट कॉलर को आज के शो के लाइन पर। नमस्कार उस्मान जी, कैसे हैं आप?
1: साहब आपको
0: ईद है मिलाद उन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: भी शुभकामना साहब, पूरे टीम को, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं आप लोग,
0: धन्यवाद साहब,
1: और
0: धन्यवाद।
1: गाँव का दिल खुश रहता है आप लोगों से।
0: आज आपने क्या क्या किया है साहब, आज सुबह से? आज आपने सुबह से कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ घूमे हैं सर आज आप? ये भी सही है सर, बहुत बढ़िया है कि आज आप। तो आज कोई शायरी सुनाएंगे आप? क्या बात, ये गाना मैं करता हूँ, प्ले करता हूँ अभी आपके लिए। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गाना? आपको, सबको, आपने अपने पड़ोसी को, जो भी आसपास सुन रहे हैं, उन सभी को ये आप गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं, है ना साहब? क्या बात कही आपने, क्या बात कही साहब, बहुत ही बढ़िया। और इस शायरी के साथ आज की हमारी ये कॉल जो है, आज का जो शो का है, पूरा होता है। और बहुत ही अच्छा लगा उस्मान जी आपने इस समय में कॉल। धन्यवाद सर। हम भी सर आपकी कॉल कॉल कॉल उठाने में हम भी मजबूर हो जाते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा उस्मान जी, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते उस्मान जी की फरमाइश करते हैं पूरी, और आपसे कल होगी मुलाकात ठीक 9 बजे इसी शो दिल से दिल तक अखिल संग में। तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए, थोड़ी सी मुस्कान के साथ जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, और गुड नाइट साहब, गुड नाइट।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: सोच जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं, स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और अपने पैरों पर खड़े होने का सपना सच हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और दूरदर्शी सोच में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
0: गोरखपुर में भी इस प्रयासों का असर उन चेहरों पर दिखता है जिन्होंने अवसर को अपनी मेहनत से सफलता में बदलना है।
1: तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी महिला उद्यमी की कहानी जिनके लिए कारोबार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है।
2: नमस्कार। मेरी यात्रा 2014 में एक साइकिल से शुरू हुई थी और आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं उद्यमी के रूप में आप लोगों के बीच आऊंगी। तो ये सब संभव हुआ हमारे प्रयास और सरकार की योजनाओं से।
3: आप अभी इस समय सिद्ध विनायक पैकेजर्स नामक जो आपका संस्थान है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और विस्तार में हमको बताए कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के क्रम में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपने किन किन योजनाओं का लाभ दिया और जिससे आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जीवन स्तर जो सुधरा हुआ है, तो जो विकास की यात्रा है वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आप किन किन योजनाओं से लाभान्वित कराया है।
2: पहले तो जब मैं अकेले इस मुहिम

0: को तय किया। और उन दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एक डूडा का जो लोन होता है वो भी नहीं मिल पाया, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे पीएनजीपी से 50 लाख का लोन मिला मुझे आगे काम बढ़ाने में। और मैंने अपने साथ साथ जो मेरी संस्था है वुमेन स्टैंड सोसाइटी, उसके माध्यम से मेरे साथ हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं जिस तरह से मैं यात्रा में अकेले निकली थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी बहनों को भी संघर्षों का सामना करना पड़े, इसीलिए मैं अपनी बहनों को जोड़ के, और आज हमारे सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उन अपने तो मैं लाभान्वित हुई ही, और अपने साथ साथ मैं अपने संस्था से जुड़ी और भी जितनी बहनें मेरे पास आती हैं उनको सरकार की योजनाओं से मैंने स्वयं लाभान्वित किया, युवाओं को, महिलाओं को। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारी बहनें जुड़ी हैं, सीएम युवा से जुड़ी हैं बहनें, ओडीओपी के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से महिलाएं सम्मानित हो रही हैं, और उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया। तो मशीन सरकार से मिलती है और सिलाई का काम उन्हें मैं दे देती हूँ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं, और इससे हमारी बहनें भी चाहती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं का और युवाओं का बड़ा विकास हुआ है। जो कहीं नौकरी के लिए जाते थे, आज युवा और महिला स्वयं 10-20 लोगों को रख के समूह के ही माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें एक 8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला है, जिसमें करीबन 300 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मुख पर ये मुस्कान कि हम कहाँ जाते रोजगार के लिए शहर में। आज हमारे सरकार की ये देन है, ये उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अवसर दिए।
1: दिव्यवाली दीदी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सुनने में आया है कि आपसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम लोगों का ये लगता हुआ ब्लॉक चरगावा है, तो चरगावा ब्लॉक के अंतर्गत, उस विकास खंड के अंतर्गत जो वहाँ के BDO साहब हैं, उनसे लाइजनिंग करके, उनसे बातचीत करके तमाम बहनों को आपने जो सरकार द्वारा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार की जो अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे भी आप से जुड़ी जो महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं हैं, उनको भी आप BDO साहब से बातचीत करके जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो थोड़ा सा उसको भी आप बताना।
0: बिल्कुल, BDO साहब से हमने प्रयास, क्योंकि महिलाएं कोई भी काम होता है तो मेरे पास आती हैं, तो वृद्धा पेंशन और आयुष्मान कार्ड जिन महिलाओं के नहीं बन पाते हैं, हम लोग जाती है, हमारी टीम, हम भी जाते हैं। तो आज महिलाएं आयुष्मान कार्ड के साथ साथ वृद्धा पेंशन, आवास योजना, और आवास के लिए तो ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो बिल्कुल ऋणी थी, उसकी जरूरत थी, वैसी महिलाओं को आवास मिला है इस सरकार में। तो वो सारी महिलाएं हमारे साथ इसीलिए जुड़ी हैं कि मैं सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ पाती हूं और उसका लाभ उनको सीधे अधिकारियों के संपर्क के द्वारा उनको हम लोग देते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं सभी अधिकारियों से मिलती जुलती हूँ, जाती हूँ, आज हमारे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, योजनाओं की बाढ़ है, और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जितना हो रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो युवा और महिलाओं को कहीं भी देखें तो उनको अपने बुलाएं और उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
1: बिल्कुल संगीता जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं को आपने जो है सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है, और साथ ही साथ उद्योग जगत से भी उन लोगों को जोड़ा है, उनका रोजगार का सीजन हुआ है, उनका जीवन सुखमय हुआ है, तो क्यों न हम एक साथ बोले कि विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार, धन्यवाद पूज्य महाराज जी।
0: धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश सरकार को है ही, और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये तमाम महिलाएं जो अपने घर के चार दीवारी में कैद थी उसको समूह के ही माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर निकाला और उनको ये अवसर दिया कि वो स्वरोजगार से जुड़ी, आत्मनिर्भर बनी। तो इसके लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश, और धन्यवाद हमारे माननीय महाराज जी को हम सभी महिलाओं की तरफ से और हम सभी युवाओं की तरफ से।
1: बहुत बहुत आभार संगीता पांडे जी, आपने जो है अपना कीमती समय दिया और सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, किस प्रकार से आपने इसका लाभ उठाया है, तो विकास का प्रदेश
0: उत्तर प्रदेश।
2: सुना आपने, जब सरकारी सहयोग अपने हुनर और मेहनत का साथ मिलता है तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़ी मिसाल बन सकता है।
3: और यही कहानी गोरखपुर के एक और लाभार्थी की है, जहां विकास का मतलब सिर्फ रोजगार या कारोबार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जीवन में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा का विस्तार भी है।
4: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत हम आ पहुँचे हैं यहाँ से लगे हुए गांव घोसीपुरवा में, जहाँ पर तेजू प्रसाद जी का घर है। उनसे हम जानेंगे कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो विकास की कहानी लाभार्थी की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: हमारा नाम तेजू प्रसाद है।
4: तेजू जी, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है?
5: उनको घर का पैसा मिला, घर बन गया है, आयुष्मान कार्ड का हो गया, राशन कार्ड भी चलता है, माँ का रह गई वृद्धा पेंशन में, और बाकी जो सरकार की तरफ से वो ठीक ही चल रहा है।
4: हमको आपका घर ठीक नहीं था, सरकार की तरफ से आपको आवास मिल गया है?
5: मिल गया, आवास मिल गया, घर बन गया।
4: आपकी माता जी को वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, तो फिर भी आप संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर?
5: हाँ, एकदम संतुष्ट हूँ।
4: अभी जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे?
5: उनका धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ किए, अब उससे अधिक कुछ करें तो और अच्छा भी लगेगा।
4: तो ये थे हमारे साथ तेजू प्रसाद जी, जो यहाँ से लगे हुए गांव घोसीपुरवा के निवासी हैं। हम देख रहे हैं, इनसे भी बात करके हमने जाना और आप भी सुन रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, संतुष्ट है। कुछ कमियां हैं वो भी पूरी होंगी, जैसे सरकार ने अभी तक विकास की इस कहानी को विस्तृत किया है। हम आशा करते हैं कि बाकी जनता भी जो लाभान्वित होने से अभी वंचित है उसको भी इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा, और तेजू प्रसाद जी की तरह बाकी जनता भी हमारी सरकार से ऐसी संतुष्ट होगी और उनके द्वारा संचालित योजनाओं का इसी तरह से लाभ प्राप्त करती रहेगी।
2: यानी एक और मेहनत से आगे बढ़ने का अवसर, तो दूसरी ओर परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का सहारा, यही योजनाओं का असली असर है।
3: मुख्यमंत्री आवास योजना से परिवार को अपने घर का सहारा मिला, आयुष्मान कार्ड से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद मजबूत की, राशन कार्ड ने परिवार की रोजमर्रा की जरूरत में मदद की, वृद्ध पेंशन ने बुजुर्ग सदस्य के जीवन में आर्थिक संबल जोड़ा।
2: मतलब सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों पर सीधे पहुंचती हैं, तो उनका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, वो घर की चौखट से लेकर फिर खुशियों तक दिखाई देता है।
3: और यही तो विकास की वह तस्वीर है, जहां एक परिवार अपने आज को संभालते हुए बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाता है।
2: वाकई इन अनुभवों में सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई देती है।
3: और इस बदलाव को जमीन पर किस तरह गति मिल रही है, योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसे लेकर अब सुनते हैं संबंधित अधिकारी की बात।
6: मेरा नाम उज्जवल सिंह है और वर्तमान में मैं जनपद गोरखपुर में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्यरत हूँ।
4: सबसे पहले जानना चाहूंगी गोरखपुर जनपद में सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं?
6: वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारी जो है योजनाएं MSME विभाग के द्वारा जो है संचालित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुसीन स्कीम अभी लॉन्च की है, जिसके अतिरिक्त जो है ODOP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, CM युवा जिसे हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP टूल किट योजना, इसके अतिरिक्त जो है MSME 2022 और टेक्निकल अपग्रेडेशन, ऐसी तमाम योजनाएं जो है संचालित हैं, जिनका जो है लाभ समाज के विभिन्न तबके के लोग जो है उठा रहे हैं।
4: जो संबंधित व्यक्ति हैं इस योजनाओं के, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं?
6: जो विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित हैं उसमें उनको जो है ट्रेनिंग देने से लेके यानी कि उनको कौशल उन्नयन से लेके और उनको कैसे जो है स्वरोजगार तक ले जाने के जितने भी चरण होते हैं, हर एक चरण पे जो है हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो संचालित हैं उसका लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है किसी विधा में तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है दर्जी, लोहार, नाई, टोकरी बुनकर ऐसे तमाम जो है जो विधाएं हैं उसमें उनको जो है प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है। ODOP के अंतर्गत जो है टेरा कोटा और रेडीमेड गारमेंट से संबंधित जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही अन्य लोग जो इस काम में इच्छुक है कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए जो है ऋण स्कीम है, लोन स्कीम है, उदाहरण के लिए ODOP मार्जिन मनी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, CM युवा जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक जनपद एक व्यंजन स्कीम जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च की गई है, इनके माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो MSME की इकाइयां हैं उनके लिए MSME पॉलिसी 2022 है उसके तहत उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सी इकाइयां जो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। कुछ लोग जो समूहों में काम करना चाहते हैं, क्लस्टर बेस काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो ODOP CFC की योजनाएं हैं, साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा MSC CTP योजना भी राज्य सरकार द्वारा जो है वो भी लागू है। तो काफी बड़े कैनवास पे जो है कई स्कीमों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
4: हमारी आधी आबादी महिलाएं, युवाओं के लिए और जो जन समूह में जो लोन करते हैं इन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ये लाभान्वित हो रहे हैं उसमें?
6: सभी स्कीमों में जो है विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष जो है प्राविधान किया गया है, चाहे हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, चाहे CM युवा हो, चाहे ODOP हो और चाहे MSME पॉलिसी 2022 हो, हर स्कीम में महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा CM युवा स्कीम जो लॉन्च की गई है वो विशेषकर युवाओं को ही फोकस करते हुए लॉन्च की गई है और जिसमें युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जा रहा है। इसमें 21 से 40 उम्र के जो भी युवा है वो अगर अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो विभागीय योजना के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और युवाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए भी एक जनपद एक व्यंजन जो स्कीम है, क्योंकि ये खान पान से संबंधित है और मुझे लगता है कि युवाओं के द्वारा जो है बढ़ चढ़ के इस तरह से जो व्यंजनों से संबंधित उसमें काफी उनकी रुचि भी होती है तो उस क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकते हैं।
4: कोई व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाह रहा है किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे?
6: सबसे पहले तो लाभ अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले हमारे जो ऑफिस है हमारे ऑफिस में किसी भी कार्य दिवस में वो आ सकता है। यहाँ पे उनको जो है जो भी स्कीम का वो लाभ लेना चाहते हैं उससे संबंधित उनको स्कीम के बारे में बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं हैं हमारी वो सारी पोर्टल पे ऑन बोर्ड की गई है तो पोर्टल के माध्यम से भी जाके वो स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, अगर चाहे वो ऑनलाइन मोड में या फिर अगर वो अगर इतने अवेयर नहीं है, लगता है कि शायद चीजें हम पोर्टल के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे तो किसी भी कार्य दिवस में ऑफिस में आके स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं।
4: योजनाएं सिर्फ टेबल तक ना रह जाए, कागजों तक ना रह जाए, आम जनमानस तक जाए, प्रभावी रूप से संचालित भी हो, इस पे क्या पैनी नजर है?
6: जितनी भी स्कीम्स हैं सभी स्कीम्स का यही मकसद होता है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो स्कीम पहुंचे। और हमारी जितनी भी स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी संचालित स्कीम है विभाग के द्वारा जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बढ़ चढ़ के लोगों के द्वारा उसमें हिस्सा लिया जा रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, चाहे ODOP स्कीम हो, चाहे CM युवा हो, तो सभी में ही बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वहां तक वो स्कीम पहुंच रही है।
4: अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा और मेरा यही कहना है कि विभाग और सरकार के द्वारा बहुत सी अच्छी स्कीम्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं और ये स्कीम आपकी ही है और बढ़ चढ़ के जो है इन स्कीम्स का फायदा लेते हुए और उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की में आप लोग जो है सहभागी।
4: बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्ज्वल सिंह जी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा आयोजित ये इन योजनाओं का संबंधित व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
2: यानी गोरखपुर की ये कहानी बताती है कि विकास सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी परियोजनाओं का नाम नहीं,
3: बल्कि विकास वो है जब किसी के हुनर को अवसर मिले, किसी के कारोबार को सहारा मिले और किसी परिवार को आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का संबल मिले।
2: यही है नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहाँ परंपरा के साथ प्रगति है और अवसर के साथ आत्मनिर्भरता और

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।